थोड़ी सबको आखे अपना दिसना ही सोचन कडिया किता आपो अपना पेलेखा संडिया जा रहना नहीं है ते जग ता कायद कर बहंडिया मंदा किसना आखिया पड़क करे हो बुझिया मूर्ख है ना नालू जिये गुर सिखा मन वधाइया वधाइया।

नानक फिका बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिया फिके फिके सोए फिका दरगे सदिया मोथु का फिके पाहे फिका मूर्ख आखिए पाना ले सजाए महला पहला अंदर झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैला सरती रजे नावे तै ना ही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदरते भले संसार इन्ने हो लगा रब से।

0: एक ने आस की दूज लग जाए, नानक आस कांडिये सदिर समाए। चंगे चंगा कर मन मंदे मंदा होए, आस के होने आखिए जेले खैबर ते सोए महला दूजा।
1: राम जो दवे करे मंदो कुथा जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए। पौड़ी जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है जित की।

0: चाकर लगे चाकरी नाले गार बर्बाद गला करे कनेरिया खस ना पाए साधु आप गवाए सो वाहिगुरु चाकर लगे चाकरी नाले गार बार गला करे कनेरिया खस ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
1: जो जी होए सो वे मौका कहे आवा।

और नानक कंतना जपनी हरता के पारावार पाप कराए साख विराप कराए मार एक नागरी जंजीर एक तुरी चढ़ा विसियार आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस कर ली सार हर जुगे

0: आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे एक ने तो समाइया एक चुले रहन चढ़े एक ने हाली पैसवन कुपर रहन खड़े तेना सवार नानका नानका जिनको नदर करे महला दूजा
1: पे सज करे आप जाई पे रखे आप इस वे जंत पाए के देखे था प्यो था किस नौ कहिए नानका सब किछ आपे आप सब किछ आपे आप पौड़ी वडेकिया वड्याइया पिछ कहना रहन न जाए सुख का कादर करे दे लिया रिजक संभाले साई

ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

ही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए 9870 किलोहर्ट्ज़ तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप ते ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु विश्वत जो ॾींहुं आहे, मई महीने जी 28 तारीख़ आहे। हिन वक़्तु भारत में सुबुह जा 6:30 थी चुका आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहे। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में लोली ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तफ़सील पेश कयो वेंदो ऐं 6:40 ते तव्हां प्रीतम द्वारा ऐं साथी द्वारा तव्हां ॿुधंदो भगत। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़बरूं पेश कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो त भगत कंवर राम साहिब जे मिठड़ी आवाज़ में लोली ॿुधूं।

हाँ बुधी रहा हो संत कवर राम जी जे मिठड़े आवाज में लोली हाने हेयर पेश आए तहां जे अग्या तबसिरो इंडिया पोस्ट जी कमाई माली साल 2025 में वधी करे रुपया 15,373 करोड़ थी वही आहे जेका महकमे जी 170 सालन जी तारीख में सब खां वडी माली काबिलियत मील जो पत्थर आहे। साल 2016 में महकमे जी कमाई अंदाजन रुपया 11,500 करोड़ हुई ए हिन खां पोइ वारन सालन में हर साल सरासरी रुपया 200-300 करोड़ जो वाधारो दर्ज कई वही पर हिन साल हिक ही साल में 2,100 करोड़ जी बेमिसाल वाधारो थियो आहे जेका पुरानी सरासरी खां तरकीबन 10 दफा वधीक आहे। केंद्रीय संचार ए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमा सानी हिक कामयाबी जो श्रेय हिक जुड़ियल दो रूपा तरीकेकार के दिनो जेको हिक टॉप डाउन रणनीति हुई सागे वक्त हिन खे बॉटम अप रणनीति खां जोड़ियो वियो हो जंहिं में कर्मचारियन खे कम सा पूरी तरह जोड़े रखियो वियो हो। तें केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कयादत खे सराहितो कयो जंहिं हिक अहिड़ो संगठनात्मक ढांचो तैयार कयो जंहिं रुकावटन जी पछाड़ कई उन्हनि खे दुरुस्त कयो ए नतीजो ॾेखारियो। वधीक में राज्य मंत्री हिन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो त इंडिया पोस्ट जो पार्सल ए लॉजिस्टिक्स वारे हिसे में 70% जी वाढ़ दर्ज कई वई आहे जेका टेक्नोलॉजी जे सुधारे ऐं ई कॉमर्स सां भागीदारी खे वधाइण सबब थी आहे। जॾहिं मौजूदा क़यादत कम संभाले तॾहिं पार्सल जी कुल कमाई अंदाज़न में 600 करोड़ हुई हाणे ओटीपी आधारित डिलीवरी एसएसएस ट्रेकिंग यूपीआई डिजिटल भुगतान जी मंजूरी ऐं वॾनि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मन सां बी टू बी साझेदारीअ जे अचण खां सिर्फ़ पार्सल सेवा में ही रुपया 10,000 करोड़ ताईं जी कमाई पैदा करण जी सहूलियत अंदाजो कई वई आहे। डिलीवरीअ खे तेज करण लाइ रूटन खे बहितर बणायो वियो आहे। हिन वॾे पैमाने ते पायलट प्रोजेक्ट करण खां पोइ इंडिया पोस्ट 6 मेट्रो शहरनि में 24 कलाक ऐं 48 कलाक जी स्पीड पोस्ट डिलीवरी सेवा शुरू कई आहे जंहिंखे आवाम में जागरूकता आणण लाइ हिक वॾे मुहिम जो सहारो बि ॾिनो वियो आहे। डॉ पेमा सानी चयो त जीअं जीअं रवायतीअ ख़त जो इस्तेमाल घटिजी रहियो आहे तीअं तीअं लॉजिस्टिक ऐं पार्सल सेवा महकमे लाइ तरक़ी जो मुख्य मान बणजी साम्हूं आयो आहे। इंडिया पोस्ट जो आधुनिकरण मुहिम जो हिकु मुख्य आधार आईटी 2.0 जे हिसे तौर एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी योजना जे तहत रुपया 5,800 करोड़ जो सरमायो आहे। राज्य मंत्री महकमे जे उन्हनि सोच खे साम्हूं रखियो जंहिंमें पूरी तरह सां डिजिटल एंड टू एंड सेवाऊं

शामिल आहिनि हिन खां नागरिक बिना कंहिं पोस्ट ऑफिस वञण जे सिर्फ़ ब्राउज़र जे हिक क्लिक सां बचत साधन ऐं बीमा पॉलिसियूं जीअं त PLI ऐं IPLI ख़रीद करे सघंदा, डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड करे सघंदा ऐं मैच्योर थियल पॉलिसियुनि जो पैसो सिधो पंहिंजे बैंक खातनि में हासिल करे सघंदा। पोस्टल सेविंग्स खातनि ते 4% जी व्याज दर मिलंदी आहे, जेका पूरे देश में सभ खां वधीक व्याज दर में शुमार आहे ऐं मुख्य कमर्शियल बैंकनि जी तरफ़ा ॾिनल जा कि 2.5% ब्याज दर खां घणी वधीक आहे। डिजिटल पहुच जी हिन मुहिम सां हिन बचत खातनि खे घणो वधीक अपनायो वेंदो, इहो अंदाजो आहे। IT 2.5 जे तहत सुरक्षा ढांचे में सिस्टम इस्तेमाल करण लाइ फेशियल रिकग्निशन, KYC, आधार लिंकिंग ऐं कौमी क्लाउड सुरक्षा प्रोटोकॉल जो इहो पालन शामिल आहे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जे ज़रिए ऐं वक़्त ते लॻभॻि ₹45,000 करोड़ सालाना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जे रूप में विरहाए रहियो आहे, जेको इन्हनि खे मुल्क जे आख़िरी छोर ताईं भलाईअ जी सहूलियत ताईं पहुचाइण वारो सभ खां वॾो ज़रियो बणाए थो। PPB जा नुमाइंदा मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक डिवाइस ऐं प्रिंट्स सां गॾु ॻोठाणनि घरनि ताईं वञी बैंकिंग ख़िदमतनि ताईं पहुचाईंदा आहिनि, जंहिं में पैसनि जी विहस ऐं बिलनि जी वसूली शामिल आहे। खातो सुकन्या समृद्धि स्कीम खे पूरी तरह लागू करे रहियो आहे, जीअं त वक़्त ते 3.8 करोड़ छोकिरियुनि जा खाता खोलिया विया आहिनि। महिलाउनि लाइ ख़ासि बचत स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज ऐं ॻोठनि में वॾो व्याज वारनि बचत खातनि ऐं ग्रामीण डाक सेवक नेटवर्क जे ज़रिए तेज़ीअ सां बढ़ावो ॾिनो वञी रहियो आहे। लॻभॻि 2.5 लख मुलाज़िमनि जो इहो अमलो हर ॻोठ में मौजूद आहे, जंहिंखे राज्य मंत्री इंडिया पोस्ट जी रीढ़ जी हड्डी कोठियो आहे। डॉक्टर पेमा सानी इहो बि चयो त खाते जे अॻिते जे विज़न में DBT फ़ाइदेमंदनि खे हुन जी आबादीअ ऐं ज़रूरत मुताबिक मुनासिब ॿिया ऐं बचत स्कीमनि जा सुझाव ॾियण शामिल आहे, ताकी हुन जी माली सलामतीअ खे ॿियो बि मज़बूत कजे। बुनियादी ढांचे जे सुधार सां गॾु इंडिया पोस्ट पंहिंजे मुलाज़िमनि लाइ वॾे पैमाने ते सलाहियत वधाइण ऐं बर्ताव तब्दीलीअ जो प्रोग्राम शुरू करियो आहे। हर 100 मुलाज़िम लाइ ट्रेनिंग सेशन रखिया वई रहिया आहिनि, जिन में ग्राहकनि सां ॻाल्हाइण, सर्विस डिलीवरी ऐं सेल्स स्किल्स ते ख़ासि ध्यानु ॾिनो वञी रहियो आहे। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानिया इहो ज़ोर ॾेई चयो त इहा तहज़ीबी ऐं सोच जी तब्दीली जेका सिर्फ़ लेन देन खां न पलटजी ग्राहक केंद्रीय बणजर ते ध्यानु ॾिए थी, सां खाके जी तब्दीलीअ लाइ ओतिरी ई ज़रूरी आहे जिन जी का बि टेक्नोलॉजी तब्दीली पूरे मुल्क में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कया विया, ताकी सीधे तौर ते फील्ड स्टॉप खां राबतो कजे, खाके जी माली हालत समझाए वञे ऐं विकसित भारत जे सुपननि खे सच करण में हुन जे किरदार खां वाक़िफ़ कजे। इन खां गॾु ई इंडिया पोस्ट पंहिंजे पोस्ट ऑफिस नेटवर्क खे जिस्मानी तौर ते जदीद बणाइण जो कम बि करे रहियो आहे। शहरी पोस्ट ऑफिसनि खे 60 खां 70 लख रूपियनि जी सहूलियत जे ख़र्च सां सुधारे वञी रहियो आहे, जिन में डिजिटल काउंटर, सुधारियल आधार अपडेशन ख़िदमतनि ऐं ऑफिस जे अंदर ई कम करण जी सांझी जॻह शामिल आहे। यूनिवर्सिटियुनि ऐं पढ़ाई जे

अदारन में नवीन नस्ल सां पोस्ट ऑफिस कायम कया वई रहा आहिनि, जिन में हिंदुस्तान जे जवाननि सां जुड़ियल लाइ तहज़ीबी अंश ऐं डिजिटल सहूलियतुनि शामिल कयूं वयूं आहिनि। ॻोठाणनि इलाक़नि में ध्यानु पूरी तरह सभिनि खे शामिल करण ते आहे, ताकी हर घर ताईं पहुचे हुन खे लागू थियण वारनि स्कीमनि में शामिल कजे ऐं पोस्ट ऑफिस जी सभिनि माली ख़िदमतनि बाबति सिख्या ॾिनी वञे।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

अच्छो हाणे प्रीतम ए साथिन द्वारा मिठड़ी आवाज में भगत कवराम जी भगत जी के बुधौं भगत बुधौं।

कहाँ बुद्धि रहा हो पीतम जी ए साथी जी, मिठड़ी आवाज पे भगत। ए भगत खोपो कुछ खास खास खबरियों, खारिजी मामलन जो मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस पहुतो आहे। ईवी जे खारिज मामलन जे मंत्री जी गैर रश्मी बैठक में भाग वठन लाए। भारत कनाडा 2030 तां बपक्षीय व्यापार जे 50 अरब अमेरिकी डॉलर ताई वधाए जे सागे मकसद जी तकदीक कई। अमेरिकी सीनेटर लिट्से ग्राहम ने अमेरिका ईरान गालहैंड में पाकिस्तान जी विचोलिए वारी भूमिका ते सवाल खया कया आहिन। ते इसराइल जे खिलाफ इस्लामाबाद जी पुरानी मुकालफत जो हवालो दिनो। हाने भारतीय शूटर ईशा सिंह म्यूनिक में आई एसएसएफ वर्ल्ड कप में और तंजी 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े स्वर्ण पदक खट्यो।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कनौर तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भूजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि

0: ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेंट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. During the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्ट्रीट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
1: हैं? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स इलीगल कंस्ट्रक्शंस विद इन 15 किलोमीटर्स ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर्स एंड डिमोलिश ऑल सच स्ट्रक्चर्स दैट हैव कम अप ओवर द इयर्स। चेयरिंग द सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इन बीकानेर, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The West Bengal government has handed over 142 acres of

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंजलि भरद्वाज की आवाज में भजन। बांसुरी पर संगत कर रहे हैं विनय प्रसन्ना, सितार पर खालिद मुस्तफा और तबले पर राशिद नियाजी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

इसी के साथ आज का ये संगीति का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने अंजलि भरद्वाज की आवाज में मेरा बाई की भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, सूरज की बाहों में है रोशनी। जी हाँ, किस और यूँ कह के सांसों में भी बोल रहे हैं, जी हाँ रोशनी है। और वाकई में सूरज के साथ साथ हमारा भी दिन नया शुरू हो चुका है। और ये जो नया दिन होता है, एक तरह से कहें कि हमारे लिए एक और नई शुरुआत होती है, नए तरीके से अपने कामों को करने की और फिर वक्त को अपने हिसाब से मोड़ने की। और बिल्कुल, मैं भी चाहूंगी कि आप लोगों की भी सुबह बहुत अच्छी हो, बल्कि हर दिन बहुत अच्छा हो। और जो सुबह की जो शुरुआत है ना, बहुत अच्छी सी होती है ना, पॉजिटिव सी, तो आप बस फुर्ती से काम करते चले जाते हैं। और यही होना चाहिए हम सब में, बिल्कुल हम स्वस्थ रहने चाहिए। और प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनने चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ आप जो जुड़े हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में, गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज जैसा कि बहुत ही अच्छा दिन है, आज ईद है, तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और बहुत अच्छी तरह से आपका ये त्यौहार गुजरे, और बल्कि कहें कि खुशियां ही खुशियां लेकर आए आपके जीवन में।

ये एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद ईद की, और बहुत ही प्यारी तरीके से आप अपना त्यौहार मना रहे होंगे। और आज के दिन तो यूँ कहें कि रौनक ही रौनक हैं घरों में, और त्यौहार तो वाकई में खुशियों का पैगाम लाते हैं, जीवन में नई नई खुशियाँ और उमंग भरते हैं। और सुबह भी हो गई है, ये भी एक समय है कि आप अपने दिन की शुरुआत कर चुके हैं, और यूँ कहें कि अपने दिमाग की बत्तियाँ भी खुल गई हैं और सोच रहे होंगे कि आज क्या क्या करने वाले हो। बहुत कुछ होता है सभी के जीवन में करने के लिए, जैसे ही उठते हैं थोड़ा सा कभी कभी आलस आता है और फिर झट से अपने कामों में लग जाते हैं, और यही जिंदगी है दोस्तों।

ये था मित्र वेदी की आवाज़ में फिल्म अंधाधुन का ये गीत, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और वाकई बहुत ही गुड है ये मॉर्निंग, और तभी तो गुड मॉर्निंग है। और प्यारे प्यारे गीत भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिन्हें आप पसंद करें और एक तरह से फिर नई ऊर्जा के साथ बढ़ जाएं, जो भी आलस है उसे आप त्याग दें और बस अपने कामों में लग जाएं और अपने सपने बुने और सपनों को पूरा करने में लग जाएं। वाकई में बहुत से काम सभी को होते हैं, सुबह सुबह पूरा का पूरा एक तरह से लेखा जोखा बना लेते हैं क्या क्या करना है, हर व्यक्ति लगा हुआ है। और यही जिंदगी है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, और आप बिजी रहें यही फायदेमंद है। बिल्कुल, जब कभी मैंने जीवन में देखा है कि जब हम खाली बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं होता तो बस दिमाग घूमता रहता है। इससे अच्छा होता है बिजी रहना, काम में लगे रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और जीवन में नई नई चीजें आपकी होती हैं।

अशुभ घड़ी हर घड़ी शुभ होती है। बस जब भी आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, खूब एनर्जी से भर जाते हैं, तो फिर वाकई में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। यही शुभारंभ होता है हर चीज़ का, जब भी आप कोई नया काम करने वाले हों या किसी काम को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और वक्त हो चला है कि हम इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं यहीं पर। आपसे विदा लेना चाहती हूँ मैं, आपकी दोस्त शुभा शर्मा। तो मुझे यानी दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की, पर जाइएगा कहीं नहीं, एक प्यारा सा गीत छोड़े जा रही हूँ आपके साथ। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब वक्त हो चला है समाचारों को, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
4: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हो, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और बिंजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
6: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
5: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
7: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
8: मध्य प्रदेश में इस बार मौतापा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई

0: में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
2: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद यह फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमरीका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलीडे,

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के साथ अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैन-उल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले दो दिन शदीद गर्मी व लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोशो-खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमल आवरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वह फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवे, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफटॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि वाधवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रूकावट लॉजिस्टिक इको निजाम के साथ मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट की इन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तआवुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमल आवरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को यह हिदायत दी है कि मुल्क की सरहद के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैरकानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़िश्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वज़ारत दाखिला ने जिला मजिस्ट्रेट्स को यह इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें और उनके मालियाती जराए का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत दी गई है कि वह जराइम और मनुष्यात की स्मगलिंग के जराए, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा न हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद

0: याद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मरकजी वजीर दाखिला गांधीनगर की कलोल तहसील से अपने दौरे का आगाज करेंगे और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के इकदाम के तहत तैयार की गई अवामी सहूलियात को वक्फ करेंगे, जिनमें जेटवा गांव की झील, नौ तामीर शुदा तीन लाइब्रेरियां और प्राइमरी स्कूल की नई इमारतें शामिल हैं। शाम को जनाब शाह अहमदाबाद में प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और सोलह और भीमजीपुरा भारत माता स्क्वायर माता उमिया धाम कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला आइंदा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी का जायजा लेने के लिए शाही बाग सर्किट हाउस में एक आला सतह मीटिंग में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
2: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबिना कमेटी सीसीईए ने पीडीएस में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक पीडीएस को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को सोलहवें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रूपये मुख्तस किए गए हैं। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: ईसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक़िद हो रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है, जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वजी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि यह त्यौहार मुल्क के शहरियों को खासतौर पर माली तौर पर कमजोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तलकीन करता है। उन्होंने आवाम से मुआशरे में मोहब्बत और इत्तेफाक को फरोग देने के जज्बे को मुस्तहकम करने की अपील की। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुशउसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोग नजदीकी मस्जिद में ईद उल अजहा की खुसूसी नमाज अदा कर रहे हैं। फरीजा कुर्बानी नमाज के बाद अदा किया जाएगा। रियासती सरकार ने किसी भी नई रिवायत के शुरू न होने और ममनू जानवरों की कुर्बानी न होने देने को यकीनी बनाने के लिए पहले ही सभी जिला पुलिस सरबराहान को एडवाइजरी जारी की हुई है। डीजीपी राजीव कृष्ण की हिदायत के बाद त्यौहार को पुरअमन तौर पर मनाए जाने को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हसास इलाकों में मार्च किया। पुलिस कानपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे हसास शहरों में मजीद निगरानी बरत रही है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमुना।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटॉक के पलजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की तीसरी रियासत होगा। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, जबरदस्त नज्म व जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ होने के एतराफ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। एसएसपी सतह के अफसर की क्यादत में 400 सिक्किम पुलिस एहलकारों का दस्ता सदर जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। وزیراعظم نریندر مودی کی خصوصی پہل کے طور پر یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام سانچی استوپا کے مقدس باقیات کو منگولیا بھیجا جا رہا ہے. یہ باقیات بھگوان بدھ کے دو اہم پیروکار سریپترا اور مود گلیانا سے تعلق رکھتے ہیں. آج ان باقیات کو پورے اعزاز کے ساتھ بھوپال کے راجہ بھوج ہوائی اڈے سے دلی بھیجا جائے گا. کل یہ باقیات عوام کے لیے نئی دلی کے نیشنل میوزیم میں رکھے جائیں گے. اس کے بعد 30 مئی کو بھارتی فضائیہ کا خصوصی

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन, राग है शुद्ध सारंग। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

पाकिस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना राकेश पाठक का गायन। राग था शुद्ध सारंग, तबले पर संगत करी थी आशीष मिश्रा ने और हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वस्त्र उद्योग आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो न केवल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि तकनीकी, औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में वस्त्र रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत रेशे तथा वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण जैसे प्रमुख आयाम इसकी प्रगति के आधार स्तंभ हैं। विशेष जानकारी के लिए सुनते हैं भेंट वार्ता। वस्त्र उद्योग में रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत तथा वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण। डॉक्टर M.S. परमार, प्रख्यात वस्त्र वैज्ञानिक और महानिदेशक, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ नित्रा से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ये जो वस्त्र उद्योग है, जिसका जो रसायन है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
2: पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले नित्रा से स्टार्ट करता हूँ। 1974 में हमारा ये संस्था स्थापित हुआ था उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में आती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसके अलावा आसपास के जितने भी टेक्सटाइल्स के घराने थे बड़े बड़े, मोदी ग्रुप और आपके बिरला ग्रुप, DCM ग्रुप, ये लोग बहुत मतलब उसमें उन्होंने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया कि हमारे इस संस्था को गाजियाबाद में स्थापित कर सके, क्योंकि आसपास के इलाकों में ये लोग रहा करते थे। इनकी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, आप तो जानते हैं, मोदी मिल हुआ करती थी जिसके नाम पे मोदी नगर उस समय लगा। तो एक टाइम ऐसा था कि ये लोगों ने मिलकर यूपी गवर्नमेंट से गुजारिश की कि हमें ऐसा कोई संस्था होना चाहिए जो, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और ये इंडस्ट्रीज वालों ने, इन्होंने मिलकर ये संस्था का निर्माण किया और 1974 में ये स्टार्ट हुई। तो इस संस्था का जो मेन काम है सर, पहला काम ये है कि अलग अलग तरह से रिसर्च करना, जिसमें गवर्नमेंट जो फंड करती है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फंड करती है, उसको करके कोई एक नया रिसर्च करके जो भी उसका फाइंडिंग आए उसको कमर्शलाइज करे और इंडस्ट्रीज को दे। वो तो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट हुआ। और दूसरा हुआ कि उस समय क्या होता था, लोगों को प्रॉब्लम आती थी कई बार इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खास करके। जैसे देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारा कहां से काम स्टार्ट होता है, आपको फाइबर होना चाहिए, जिसे कहते हैं रेशा, फाइबर से लेके फिर आपको धागा बनाना है, धागा से वस्त्र बनाने हैं और फिर उसको डाई करना है, रंगाई करना है, सब कुछ करते हुए उसे फिर फाइनली जाके गारमेंट बनता है। तो ये सारा प्रोसेस में जो भी मशीन यूज होती थी, जो भी कुछ होता था, तो काफी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होती थी। तो हमारे यहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स लोग हुआ करते हैं, आज भी हैं, जो इंडस्ट्रीज को जहां पर भी प्रॉब्लम आती है, धागा बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, रंगाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी संस्था उनको हेल्प करती है, तो हम उसे कंसल्टेंसी वर्क कहते हैं। तो थर्ड एक फिर रिक्वायरमेंट ऐसा हुआ कि अगर कोई भी आप टेक्सटाइल बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसे देखी जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी लैब होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी के बारे में सारा एनालिसिस किया जाए, उसमें देखा जाए कपड़े की क्वालिटी क्या है, धागे की क्वालिटी क्या है। तो फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लैब स्थापित हुई जिसमें कि हम कपड़े की सारी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, सभी गुण उसमें चेक करते हैं और इंडस्ट्रीज वाले बहुत ज्यादा सैंपल इधर भेजते हैं, कमर्शियल टेस्टिंग भी करते हैं, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके कि कपड़े और धागे में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारा काम भी करते हैं। फोर्थ हमने क्या किया, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आई, उन्हें स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती थी, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, तो फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट किए। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इंडस्ट्रीज को देते हैं, ट्रेन्ड पर्सन हम देते हैं लोगों को। गारमेंट इंडस्ट्री हमारे आसपास बहुत है, गाजियाबाद के आसपास, नोएडा वगैरह जितने गुड़गांव है, बहुत गारमेंट इंडस्ट्रीज है, उनको रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो देने लगे। फिर उसको देखते देखते सर हमने एक कॉलेज भी अपना बनाया जिसको नित्रा टेक्निकल कैंपस के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस टाइम हम 3 ब्रांचेस हम लेके रन कर रहे हैं। उसमें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AIML, जो हमारे लखनऊ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है।
1: पारंपरिक रूप से तो लोग जनरली जानता है कि कपास है, ऊन है, रेशम है, इससे अलग आपने किस तरह के अन्य रेशों के निर्माण के लिए कुछ प्रयास किए हैं, अनुसंधान किए हैं और उनका क्या उपयोग है?
2: सर आपने एक बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है जो इस टाइम बहुत कहते हैं बर्निंग इशू चल रहा है। हम लोग 20 साल से एक फाइबर पे काम कर रहे थे। आपने बोला कि जैसे रेशे बहुत तरह के होते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं नेचुरल रेशे, जो मतलब नेचुरल प्रकृति उससे हमें मिलते हैं, लाइक जैसे आपने कॉटन कपास का बोला, ऊन।

0: नहीं है, सिल्क है, तो इस तरह के हम उसको कहते हैं कि ये रेशे जूट है, ये सारे रेशे हमारे नेचुरल उसमें आते हैं। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक हैं, जैसे आपके पॉलिस्टर हुए, आपके नायलॉन हुए, ये सारे सिंथेटिक उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह के रेशे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहे थे, काफी हमारे पास काम चल रहा था। तो अब क्या हो गया, एक न्यू एज फाइबर, मतलब नए तरह से नया एक फाइबर के ऊपर काम होने लगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिसको एक स्कीम का नाम दिया गया न्यू एज फाइबर, मतलब नए जमाने का रेशा,
1: जो कि तो कपड़ा निर्माण के लिए सबसे प्राथमिक चीज है।
0: क्योंकि अब धीरे धीरे हम क्या हो गया, हम प्रकृति के नजदीक जाने लगे हैं, हम अब धीरे धीरे वो सिंथेटिक से छुटकर हम दोबारा से अपने पुराने टाइम में आने लगे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो रेशा है, जैसे आप पॉलिस्टर पहनते हैं या नायलॉन पहनते हैं, ये डिग्रेड नहीं होता, मतलब अगर आप ये पड़ा हुआ है कहीं जमीन में दबा हुआ है तो वहां रहेगा, खत्म नहीं होता। कॉटन का रेशा अंदर पड़ा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर वो वहां से खत्म नहीं होगा, अगर डिग्रेड नहीं होगा, तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा, हमारी जो प्रकृति है उसको नुकसान होने के चांसेस हैं। तो उसको देखते हुए क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नई स्कीम लगाई। तो उसमें कुदरती ऐसा हुआ कि हम ऑलरेडी 20 साल से काम कर रहे थे एक नए फाइबर पे, नया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फाइबर के रूप में नया है, अदरवाइज वो बहुत पुराना प्लांट है, जिसको कि मिल्कवीड फाइबर हमने कहा, पर एक्चुअल में अगर हिंदी में कहा जाए या दूसरे रीजनल लैंग्वेज में बोला जाए, भाषाओं में बोला जाए दूसरी में, तो उसको हम आंख मदार अनंतमूल ऐसे करके कई नामों से जाना जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, सबने देखा है ये प्लांट कहाँ लगा होता है। तो इसको इंग्लिश में मिल्कवीड और बॉटनिकल लैंग्वेज में कैलोट्रोपिस बोलते हैं। अच्छा। तो उसकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, तो कैलोट्रोपिस के नाम से जाना जाता है। 20 साल से हम इस पे रिसर्च कर रहे थे सर, और मैं थोड़ा सा इसमें एक आपको और समझने के लिए बताना चाहता हूँ, और सुनने वालों के लिए भी बहुत ईजी होगा कि क्या है ये। आपने देखा होगा कि बचपन में जिनकी एज मैं कहता हूँ 40+ है, वो तो जरूर जानते होंगे कि बचपन में हम जब छोटे इधर उधर खेला करते थे, तो हम देखते थे कि फाइबर उड़ा करता है, जिसको बोलते थे बुड्ढी माई का बाल, हम लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो चीज है, वही फाइबर है कि इतना हल्का है कि हवा में उड़ता है, अंदर से 70% से ज्यादा खोखला होता है। तो इस फाइबर पे हमने काम करना शुरू किया, और पिछले 4 साल पहले हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक हमें प्रोजेक्ट मिला, जिसे हम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के नाम से, NTTM के नाम से हम जानते हैं, उससे हमें प्रोजेक्ट मिला कि ठंडे इलाकों में जो हमारे सैनिक हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, पहाड़ों पे हैं, जहां पे टेम्परेचर -20, -40 degrees तक जाता है, उनके लिए कपड़े बनाए जाएं, जो कपड़े हल्के भी हों और गर्म भी हों, और इंडिया से ही कोई ऐसा चीज बने, प्राकृतिक रेशा हो जो हमारे काम आए। अभी तक क्या हो रहा था, हम इम्पोर्ट कर रहे थे फाइबर उनके लिए, कपड़े इम्पोर्ट हो रहे थे उनके लिए। अब हमने कहा कि ठीक है हम बनाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया, हमने उसे स्टार्ट किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत अच्छे क्लॉथ बन के आए। फिर हमने अपने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक कल्टीवेशन स्टार्ट किया सर उस फाइबर का, जिसे मिल्कवीड फाइबर मदार के नाम से, रंग के नाम से जाना जाता है। और उसमें सर सबसे बड़ा रोल ये रहा कि ये इतनी आगे तक प्रोजेक्ट नहीं जाता, अब तो कमर्शियल हो गया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ गई हैं। अगर आपने नाम सुना हो, वर्धमान ग्रुप है, वेल्सपन ग्रुप है, आपका गंगा एक्रो वूल है, बड़े बड़े ग्रुप RSW है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं।
1: इस कार्य के लिए जो आपने किया है, जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के लिए थर्मल परतों वाला वस्त्र विकसित करना, और काफी सराहना की गई।
0: मुझे जो प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ने दिया था, जिसे नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ने दिया था, तो एक मुझे छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट खरीदना था, मशीन खरीदनी थी, जिसके मुझे पास पैसे नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी हमारे उद्योग भवन में, टेक्सटाइल मिनिस्टर उनकी मीटिंग ले रहे थे, तो मैंने एक रिक्वेस्ट वहां भेजी, तो मुझे भी बुलाया गया। तो मैं तो टेबल था, बहुत बड़ा टेबल था, मैं लास्ट में कोने में बैठा हुआ था, तो सब मीटिंग हो गई। तो उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो मिनिस्टर सर ने कहा हाँ हाँ बताइए। तो मैंने कहा सर हम एक इस तरह के फाइबर पे काम कर रहे हैं, और ये फाइबर बहुत गर्म है, और हमने अपने यहाँ पर 3 acres में लगाया हुआ। उन्होंने मुझे बुला लिया, और उस मीटिंग में आप कहिए बहुत बड़े बड़े लोग उसमें बैठे हुए थे, हमारे उस समय के जो इसरो के चेयरमैन वो अच्छा। थे, प्राइम मिनिस्टर सर के जो साइंटिफिक एडवाइजर वो थे, और नीति आयोग से बहुत बड़े बड़े लोग, सब लोग उसमें बैठे हुए थे मीटिंग में। तो मैं उनके पास आया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको वो दिखाया, फाइबर देखा, उन्होंने देखा, वो सब लोग बहुत खुश हो गए, कह रहे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इतना हल्का और इतना गर्म देने वाला है, बहुत अच्छा। तो मीटिंग के बाद में फिर उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, और बुलाया सारा पूछा, तो वो जो पोजीशन थी सर, वो पॉइंट था जहां पर सब कुछ चेंज हुआ। फिर उन्होंने मुझे हर क्षेत्र में उन्होंने हेल्प करना शुरू किया, कई जगह उन्होंने गाइडेंस भी दिया, आप ऐसे करिए। फिर उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वालों को हमारे साथ जोड़ा, जो आज यहां तक हम पहुंच पाए। फिर लास्ट ईयर भारत टेक्स हुआ, जिसमें स्पेशल एक प्रेजेंटेशन इसकी रखी गई, मिल्कवीड की, पूरा हमने प्रोडक्ट वहां पे डिस्प्ले में रखे, और प्राइम मिनिस्टर सर के साथ में भेंट हुई हमारा, तो वो बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए। उसमें हमारे मंत्री सर भी थे वहां पर, और मेरे मेरे साथ ही सबसे ज्यादा

0: नाम है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं वहाँ। कैश क्रॉप में तो इसका रोल बहुत बड़ा हो गया। इसमें एडवांटेज ये किसानों के लिए बहुत फायदा है। किसानों का क्या है, अभी तक कॉटन का केस में इंडिया में जो हम कॉटन लिंट जो बोलते हैं फाइबर फॉर्म में जो रेशा फॉर्म में आता है वो करीब हम एक हेक्टेयर में करीब हम कहते हैं 450-450 kg हमें मिलता है केवल। मतलब एक हेक्टेयर में आप मान लीजिए रफली 2.5 acres होता है सर। तो लेकिन ये जो है फाइबर एक एकड़ में भी आपको 300-350 kg मिल जाता है, यानी कि उससे ऑलमोस्ट ट्रिपल आपको फाइबर मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सर, एक बार लगा दो भूल जाओ, 10-12 साल तक आपका ये प्लांट चलेगा। उसमें आप तोड़िए, उसके पत्ते यूज करिए, उसके तनों से भी धागे निकलता है, रेशा निकलता है, उसको यूज करिए। अभी हमने इसमें वीगन लेदर बनाया है सर, उसका जो वेस्ट था उसको वीगन लेदर में कन्वर्ट कर दिया। उसके जो बीज निकलते हैं उसमें से ऑयल निकलता है जो फेस क्रीम में काम आता है। तो पूरा कम्प्लीट हमने उसका प्लांट का हर चीज यूटिलाइज करने लगे, जिससे कि हमारे किसानों को एक अच्छी क्रॉप मिले, कैश क्रॉप मिले। प्लस उसके साथ साथ हमारी में बहुत सारी हमारी एक तरह से लेडीज बहुत जुड़ी हुई हैं, मतलब नारी सशक्तिकरण की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं।
1: वस्त्र जो आप बनाते हैं और उसके लिए जिस तरह की एक केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजों का अंतर होता है, मतलब किस तरह से उसको बनाते हैं और किस तरह से ये उद्योग का दर्जा ले लेता है?
0: देखिये, फायर फाइटर सूट्स अभी भी इंडिया में हम बहुत कामयाब नहीं थे, ठीक है। हमारी मेट्रोपोलिटन सिटीज जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे फायर फाइटर्स अपने फायर फाइटर क्लॉथ पहनते हैं, लेकिन आप इंटीरियर में चले जाइए अभी भी नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के ही लोग फायर फाइटिंग में लग जाते हैं, जिसके उनके जान का खतरा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। इसमें हमने एक नया चीज इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया है, जिसको हम बोलते हैं फायर एंट्री सूट। मतलब आग के अंदर जा सकता है कोई आदमी पहन के, और वहां पर आप 2 मिनट रह के कोई भी काम है, किसी को बचाना है, किसी को उठाना है, कोई गैस कहीं लीक कर रही है उसे बंद करना है, वो करने के लिए वो एक ऐसा सूट बनाया गया है हमारे संस्था में जो कि ये काम कर सकता है कि अंदर जाके वो कर सकता है। ये सूट अभी तक बाहर से इम्पोर्ट हो रहा था, इसकी अगर इंडियन करेंसी में कहें तो ये 15-20 lakh rupees का एक सूट पड़ता था। हमारी एयरफोर्स, हमारी इंडियन नेवी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा इनका रिक्वायरमेंट था। और हमारे फॉरेन करेंसी का आप कहिए कितना ज्यादा हम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि हमें खरीदना, हमारे जान की हमें रक्षा करनी है तो हमें खरीदना पड़ता, पर वो हमने यहाँ पर बनाया है, इंडिया में ही बन गया है, और हमने इसको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है, वो बना रहे हैं सूट और इंडिया में ही कर रहे हैं। तो इन सूट को बनाने के लिए हमने कोशिश किया है कि जितनी इंडिया में अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जिस तरह मटेरियल वही उसमें यूज किया जाए, तो ये हमने फायर फाइटर सूट पे काम किया है।
1: बहुत अच्छा। और अभी गर्मी जैसी आ रही है, आग लगने की दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, अगली बार तो जो हाई राइज बिल्डिंगे हैं महानगरों की उसमें कभी भी किसी भी दिन किसी भी सीजन में आग लग जाती है, तो इस तरह के वस्त्र बहुत ही कामयाब होंगे।
0: कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र टेक्सटाइल है जो रोजगार देता है सर। इसमें मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सारा, मतलब आप देखिए कि बहुत बड़ा उद्योग इसमें है, क्योंकि कपड़ा हर एक को चाहिए और हर एक कपड़ा पहन रहा है, हर चीज में कपड़े की जरूरत है। टिश्यू है वो भी कपड़े में आ जाते हैं आजकल, नॉन वोवन टिश्यू वो भी कपड़े का पार्ट हो जाता है। डायपर्स यूज कर रहे हैं, सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हैं, ये सारे कपड़े के ही पार्ट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा उद्योग है, गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो रोजगार के अवसर इसमें बहुत हमें मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें मिल जाते हैं।
1: निश्चित रूप से जो वस्त्र रसायन है, नए अनुसंधानों से आप लोगों ने कुछ नए रेशों का निर्माण किया है, जैसे आपने सीवीड्स की बात की है, और निश्चित रूप से आजकल सुनते हैं कि जो पराली से भी कोई रेशा निकालने की बातचीत की जा रही है ताकि उसका उपयोग किया जा सके, वो भी कार्य आपके अनुशासन चल रहा है। इस सबसे निश्चित है कि एक पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित जो वस्त्र बनने शुरू हो जाएंगे, और इस उद्योग को जितनी मजबूती मिलेगी यह देश को आर्थिक और तकनीकी विकास में तो योगदान देगा ही, साथ ही विकसित भारत के स्वप्न को बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। डॉक्टर MS पारमार जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी वस्त्र उद्योग के बारे में, उसके रसायन के बारे में, और उससे जुड़े हुए जो एक विज्ञान है उस सब के बारे में, उसके उद्योग से जुड़े हुए जो अवसर हैं, इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: वस्त्र उद्योग में रसायन, सुरक्षात्मक वस्त्र, अपरंपरागत रेशे तथा वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण, अभी आप डॉक्टर MS परमार, प्रख्यात वस्त्र वैज्ञानिक और महानिदेशक, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ नित्रा से दिलीप झा की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

चर्चा का विषय। सामीन, इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे दिन के 10:30 पर। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद आप सुनेंगे दिन के 11:00। 11:30 पर ईद उल अजहा के मौके पर हमारा खसूसी प्रोग्राम आप सुन सकेंगे। दिन के 12:00 खबरें नश्र की जाएंगी और 12:10 से दिन के 1:00 तक फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दौरान प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। दिन के 1:00 आलमी खबरें नश्र की जाएंगी और इसके साथ ही 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरात इख्तिताम पजीर होंगी। सामीन, ये थी एक झलक आज की पहली मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबगाही प्रोग्राम के तहत लीजिए सामिन सुनी नाते रसूल करीम।
1: आज फूलों ने दरूदों से संवारा है चमन,

पति पति पे जो शबनम है गुहर हो जाए, हो पा जाए तो हर जला कमर हो जाए। संगरेजे ये किसे पेश करे तर्ज सुखन, मेरे आका मेरे महबूब खुदा आ जाओ।

0: 1936 में आज ही के दिन प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने अपना ऐतिहासिक शोध पत्र ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स प्रस्तुत किया, जिसने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की सैद्धांतिक नींव रखी थी। In 1937, the German automobile manufacturer Volkswagen was officially founded in Berlin, and this was originally tasked with creating an affordable car for the general public, or in other words, the people's car. 1952 में ग्रीस में महिलाओं को कानूनी रूप से मतदान करने और चुनाव में खड़े होने का समान अधिकार प्रदान किया गया, जो यूरोपीय महिला अधिकार आंदोलन का एक ऐतिहासिक पड़ाव था। In 1961, British lawyer Peter Benenson published the article The Forgotten Prisoners in several newspapers. This marked the official founding of the influential human rights organization Amnesty International. In 2003, the world's first ever successfully cloned horse, a half-linger filly, which was named Promethea. This was born in Italy. और श्रोताओं, इतिहास के इन महत्वपूर्ण पड़ावों के बाद अब बात उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिन्होंने अपने कार्य, विचार और उपलब्धियों से समाज और देश पर अमिट छाप छोड़ी और जिनकी जयंती या पुण्यतिथि आज के दिन से जुड़ी है। तो पुण्यतिथि में सबसे पहला नाम है विजय सिंह पथिक का। राजस्थान की धरती पर स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले क्रांतिकारी सेनानियों में विजय सिंह पथिक का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक प्रभावशाली पत्रकार और समाज सुधारक भी थे। बिजौलिया किसान आंदोलन को संगठित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने किसानों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का प्रेरणा दी। उन्होंने अंग्रेजी शासन और रियायतों के अत्याचारों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और अपने लेखन व भाषणों के माध्यम से देशभक्ति की भावना को मजबूत किया।
1: Today, listeners, we are also remembering Bhagwati Charan Bora. Well, he was a revolutionary freedom fighter, also a key member of the Hindustan Socialist Republican Association, so a close associate of Bhagat Singh. He co-authored The Philosophy of the Bomb, Justifying Revolutionary Violence. Well, his legacy remains a symbol of fearless commitment to India's independence.
0: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने अपने विचारों, लेखनी और क्रांतिकारी सोच से युवाओं में देशभक्ति की लौ जगाई, वे नाम है वीर सावरकर। 1883 में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है, एक प्रखर राष्ट्रवादी कवि, लेखक और ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया और देश की आजादी के लिए कई कठिन यातनाएं झेली। उन्हें अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल यानी काला पानी में भी लंबे समय तक कैद रखा गया। वीर सावरकर ने इतिहास, राष्ट्रवाद और समाज सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनकी चर्चित रचनाओं में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदुत्व और माझी जनथेव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने विचारों और लेखन के कारण वे भारतीय इतिहास और राजनीति में आज भी चर्चित और प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते हैं। आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले महान निर्माता निर्देशक ने महबूब खान की। महबूब खान ने भारतीय फिल्मों को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें समाज और भावनाओं से जोड़ने का काम किया। उनकी फिल्म मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। वे बड़े कैनवास पर मानवीय संघर्ष और भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए जाने जाते थे। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें आज भी बेहद सम्मान के साथ याद किया जाता है। और अब आइए आपको सुनाते हैं महबूब खान की फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत।
1: Well, we are remembering Mehboob Khan. He has left a legacy with his creativity and sensitivity in the portrayal of human relationships in his films. A pioneering filmmaker, truly. He presented timeless music in most of the films which he made, which we can hear, and he is greatly remembered for directing the social epic Mother India, right?

ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुक्काम से बैनुल अक्वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाली मशरकी हिस्सों में अगले 2 दिन शदीद गर्मी और लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशोखरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मुअस्सर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे है। असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फसले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट्स और गोबर्धन प्लांटों समेत ठोस फसले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में रफ्तार लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रुपए मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरी इलाकों, खासतौर पर शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीब कारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफटॉप शमसी पैनल्स की तंसीब कारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि बधावन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कसीर मॉडल तरक्याती तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिला रूकावट लॉजिस्टिक इको निजाम के साथ मरबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरिया को बाहमी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को बाहमी तावुन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमलावरी की जानी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम को यह हिदायत की है कि मुल्क की सरहद की 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गैर कानूनी तामीर के सिलसिले में कतई अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाएं और गुज़श्ता बरसों में तामीर किए गए ऐसे तमाम ढांचों को मुनहदिम कर दिया जाए। बीकानेर में एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद के करीब राजस्थान के सरहदी जिलों में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। वजारत दाखिला ने जिला मैजिस्ट्रेट्स को यह इजाफी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सभी बैंक सरहदी इलाकों में बैंकिंग ट्रांजेक्शन की कानूनी और माली तकमील करें, बड़े कारोबारी कंपनियों की तस्दीक करें, उनके मालियाती जराये का पता लगाएं, फर्जी खातों यानी म्यूल अकाउंट और कंपनियों का पता लगाएं, फर्जी आधार कार्ड की शिनाख्त करें और सरहद पार स्मगलिंग को रोकें। एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा है कि सरहदी जिलों को हिदायत की गई है कि वो जराइम और मुनशियात की स्मगलिंग के जराये, तौर तरीकों और नेटवर्क का गहराई से जायजा लें और इस हतमी हल को तलाश करें ताकि सरहदी इलाकों में इस तरह के मसले फिर से पैदा न हों। मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर मौसूफ अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में अवामी सहूलियात से मुतालिक खिदमात, तालीम और देही बुनियादी ढांचे के तकरीबन एक दर्जन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वीं मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इत्तलात

0: पंचायत के वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान काबीना के फैसले से मुतालिक ये ऐलान किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक्किद हो रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त और वसी इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार खुद को वक्फ करने, ईसार और बेलौस जज्बे की अलामत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह त्यौहार मुल्क के शहरियों को खासतौर पर माली तौर पर कमजोर अफराद के लिए इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करने की तरगीब देता है। उत्तर प्रदेश में ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी रियासत में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इंतजामिया ने आज बकरीद त्यौहार के खुश उसलूबी से मनाए जाने के तनाजुर में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गैंगटोंग के पालजोव स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरक की 30वीं रियासत होगी। सदर की पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, जबरदस्त नज्म व जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर से वक्फ होने के एतराफ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी वर्सा के मकाम सांची स्तूप के मुकदस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात अवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा इन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ से वाबस्ता ज़राअत मुहिम मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस 2026 का इफ्तिताह करेंगे। दो रोजा प्रोग्राम में ज़राअत और मुतालिका शोबों से मुतालिक मौजूआती तबादला ख्याल, रियासतवार शराकत, ग्रुप गौर व खौस जैसे अहम मामलात शामिल होंगे। भारतीय महकमाई मौसमियात ने कहा है कि मरकजी और शिमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने का इम्कान है। महकमे ने मशरक मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट भी जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 244 रन का निशाना रखा था, जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 19 ओवर और दो गेंदों में महज 196 रन ही बना पाई। वैभव सूर्यवंशी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कल फाइनल में जगह बनाने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालिफायर 2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस के मध्य मुकाबिल होगी। फाइनल मैच इतवार के रोज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम फाइनल में जगह बना चुकी है। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के 7 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह ने हुकाम से बैन अल-अक़वामी सरहद से 15 किलोमीटर के दायरे में सभी गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के लिए कहा है। भारत के वस्ती और शिमाल मशरकी हिस्सों में अगले दो दिन शदीद गर्मी और लू के हालात जारी रहने का इम्कान है। आज पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम फाइनल में जगह बना चुकी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है अक़वाल ज़रनी पर मबनी प्रोग्राम शम्मी फ़िरोज़ा।
2: मजहब नाम है अपने ऊपर कुछ पाबंदियां और जिम्मेदारियां आयद करने का और खुदा या भगवान की राह में अपनी ख्वाहिशात और मादी फायदे को कुर्बान करने का, उसके अहकाम और मर्जी को अपनी ख्वाहिशात और मर्जी पर तरजीह देने का। चाहे अगर सोचा जाए तो कुर्बानी हर मजहब की रूह और हकीकत है। इस जज्बे के बगैर कोई इंसान मजहब की रूह को नहीं पहुंच सकता। कुरान पाक में इरशाद है कि तुम खैर कामिल को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपने माल, औलाद और जान को अल्लाह से ज्यादा अजीज रखते हो। जाहिर है कि खैर कामिल का यह दर्जा हर इंसान के बस की बात नहीं। अपनी जात, माल, औलाद, जाहो मनसब, शोहरत और बुजुर्गी से मोहब्बत और उसको हासिल करने की कोशिश इंसान की फितरत में दाखिल है। इन चीजों से मुकम्मल आजादी हासिल करना और माया जाल से मुक्ति पाना सिर्फ खास लोगों का हिस्सा है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि जिन लोगों ने अपनी मर्जी को खत्म करके ये दर्जा हासिल किया उनकी कुर्बानियां अमर हो गईं और रहती दुनिया तक उनकी मिसाल लोगों के दिलों को कुर्बानी और त्याग पर आमादा करती रहेगी। बुद्ध मजहब में तर्क दुनिया, लिबास और रहन सहन में सादगी और दरवेशी का अंदाज उसी मजहब के रहनुमा की उस अजीम कुर्बानी की यादगार है जो उसने सच्चाई की राह में अपने तख्त ताज और बीवी बच्चों को छोड़कर दरवेशी की जिंदगी को अपनाया था। ईसाइयत में रहबानियत का रिवाज हजरत ईसा की मुजर्रद जिंदगी और खदमत खल्क के जज्बे की तखलीक के तौर पर आज तक चला आ रहा है। ईद उल अज़हा या ईद कुर्बान भी मुसलमानों में हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की यादगार के तौर पर मनाई जाती है जब उन्होंने अपने छोटे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जिनकी निस्बत से आज तक मुसलमानों को मिल्लत इब्राहिमिया कहा जाता है। यूं तो उनकी पूरी जिंदगी कुर्बानी और ईसार का बेमिसाल नमूना है, लेकिन उन्होंने अल्लाह की खातिर अपने खानदान को छोड़ा, बाप से तरके ताल्लुक किया और बादशाह की मुखालफत मोल ली, जलती हुई आग में डाला गया, वतन को छोड़कर बीवी बच्चों को लेकर जंगल आबाद किया। यूं तो हर पैगंबर और नबी को आजमाइशों से गुजरना पड़ा है, मगर हजरत इब्राहिम की कुर्बानी इंसानी तारीख में अपनी किस्म की पहली कुर्बानी थी। हजरत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से बशारत हुई कि अपनी अजीज तरीन शय अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये एक ऐसा हुक्म था जिस पर अमल करना इंसानी फितरत से बगावत करना था, मगर आपने अल्लाह के हुक्म पर अपनी मर्जी को कुर्बान कर दिया और बेटे से इस बात का जिक्र किया। बेटा जो बाप की तालीमात का अमली नमूना था, उसने कहा कि आपको जो हुक्म मिला है उसको पूरा किया जाए, मैं बसर व चश्म हाजिर हूं। हजरत इब्राहिम ने जब उस अजीम कुर्बानी को पूरा करके आंखों से पट्टी हटाई तो देखते हैं कि बेटा जिंदा और सलामत एक तरफ खड़ा है और उसकी जगह एक दुम्बा जिबाह किया हुआ पड़ा है। उसी के साथ फरिश्ते ने अल्लाह का यह पैगाम सुनाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी नजर कबूल फरमाई, आज से तुम्हारे मानने वालों के लिए हुक्म जारी किया जाता है कि तुम्हारी इस कुर्बानी की याद में हर साल एक जानवर खुदा की राह में कुर्बान किया जाए। ये अजीम बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जिनको खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त के लकब से और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह अल्लाह के लिए कुर्बान किया हुआ के खिताब से नवाजा गया। कुर्बानी एक अलामत और निशानी है जिसका मकसद एक तरफ उस अजीम कुर्बानी को याद करना है और दूसरी तरफ उस अहद को दोहराना है कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं, उसकी राह में बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी, औलाद और माल सब अल्लाह का दिया हुआ है, अगर वो उनसे किसी को भी वापस लेना चाहेगा तो हम इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। कुरान शरीफ में इरशाद है कि तुम जो कुछ कुर्बान करते हो उसका ना गोश्त खुदा को पहुंचता है और ना उसका खून। खुदा को

0: खुश है।
1: सामिन, अभी आप समाप्त फरमा रहे हैं मखमूर देहलवी का कलाम, गजल सरा है बीना पांडे।

0: Ravi Shekhar.
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। तो ये है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेज बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोड बोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था कि एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश

0: इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये बात से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है, 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं, हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसंख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होंगे। ये जो जनसंख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी INDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने

0: की जरूरत पड़ी। मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किया है, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें, उनको सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। अगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है अगर वो डिटर्मिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। तो मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंड ओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़े कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पास से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ही काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गुटबोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गुटबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसमें हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पर हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल जंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहेंगे इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर ये है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
0: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर लेना चाहता हूं। 1983 में जो आईएमडीटी एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। आईएमडीटी एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। आईएमडीटी एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर, लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो

0: भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है, तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टूडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय, ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो मुस्लिम क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी, अब ये समन्वय संभव हो पाएगा केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है। तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक, मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर

0: होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
0: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
2: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पर कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, नक्सल समस्या पर विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
3: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
0: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. پیش خدمت پروگرام میری پسند. سامعین کی خدمت میں میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب اور پرخلوص مبارکباد عید الاضحیٰ کی بھی. مہک اٹھی ہے فضا پیرہن کی خوشبو سے, مہک اٹھی ہے فضا پیرہن کی خوشبو سے, چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے.

कोई न बोला। एक शख्स ने जवाब दिया उसकी बात का, अगर

आमीन, अभी आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म से ये नगमा मीका सिंह और साथियों की आवाजों में। लीजिए सुनिए मन्ना डे आशा भोसले का गाया हुआ यह प्यारा सा नगमा। फिल्म है दिल ही तो है।

रिफ्रेन में। लीजिए आप सुनिए। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना फिल्म है ये रात फिर ना आएगी। और नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत।

0: एहसास और दिलों को जोड़ने का एहसास।
1: बड़ा फरमाया आपने सभी, कुर्बानी का ये दिन तो एक दिन में तमाम हो जाता है, लेकिन साल के जो 364 दिन बाकी बचते हैं उन तमाम दिनों में हमें इस एक दिन में सीखे गए सबक को आम करने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल,
1: मिसाल के तौर पर आज पूरी दुनिया तशद्दुद और बेसुकूनी के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में जरूरत है ईद उल अजहा के कुर्बानी के जज्बे से ये सीखने की कि हम अपने अंदर से नफरत के जज्बे को खत्म कर दें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और दरगुजर से पेश आए।
0: सही फरमाया आपने नईम साहब, यानी कि जरूरत है कि हम गुस्से को, अदम बर्दाश्त को अपने अंदर से खत्म कर दें, इनके कुर्बानी दें ताकि मोहब्बत के फूल खिल सके। और जरूरत ये भी है नईम साहब कि हम एक दूसरे से हसद और जलन रखने वाले जज्बात की कुर्बानी दें और सबको अपने साथ लेकर चले, मोहब्बत और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं ताकि साथ साथ एक रफ्तार से हम सभी लोग आगे बढ़ सकें।
1: बिल्कुल सही कहा सभिया, ईद उल अजहा का ये त्यौहार हमें दर्श देता है कि हमें अपनी जरूरतों के साथ साथ दूसरों की खुशनुदी, दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए, भाईचारे के जज्बे को आम करना चाहिए।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं इस मौके पर यह भी समझती हूँ कि जब कुर्बानी की बात आ रही है दूसरे की खुशी की, तो आज आप अपनी जेब हल्की करने में जरा सी भी कोताही नहीं बरतेंगे।
1: बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र रहिए, बस प्रोग्राम से फारिग होते हैं और उसके बाद फिर पैसे
0: देंगे आप। वैसे आपने बहुत अच्छी बातें कही नईम साहब कि ये त्यौहार वाकई हमें ये सिखाता है कि दुनिया में हम सब इंसान बराबर हैं।
1: बेशक,
0: तो फिर ये जो तफरीक है ये कैसी है? हमें बराबरी यानी मसावात को कायम करना चाहिए, अपने आसपास लोगों की जरूरतों को पूरा करने का जज्बा भी अपने दिलों में मौजूदन रखने की जरूरत है, यानी जिस हद तक भी मुमकिन हो हमें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए।
1: हमें गरीबी के अंधेरे को दूर करने की जरूरत है, हमें इल्म की रोशनी फैलाने की जरूरत है, हमें हिर्स और हवस के जज्बात से मकरूम नहीं होना है बल्कि इत्तेदाल की राह अपनाने की जरूरत है, हमें सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारने का दर्श देता है आज का ये त्यौहार सभी,
0: यानी हमारा कोई भी अमल किसी के लिए तकलीफ का जरिया ना बने और हमारा दिल सबके लिए मोहब्बत का एहसास रखे।
1: बिल्कुल सभी, आज जबकि दुनिया तेजी से बदल रही है तो ऐसे में ईद उल अजहा का ये जो त्यौहार है हमें अपने अंदर के तमाम उन जज्बों की कुर्बानी का एहसास दिलाता है जो हमें मगलूब कर देते हैं और हम गुमराह हो जाते हैं। ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है और सबसे बड़ी दौलत आपसी मेलजोल और भाईचारा है।
0: तो चलिए इस ईद पर हम क्यों ना ऐसा करें नईम साहब कि एक अहद करें, निगाह दौड़ाएं अपने आसपास, दिल के अंधेरों में रोशनी का एक दिया जलाएं, अगर कोई अकेला है, दुखी है या जरूरतमंद है तो हाथ बढ़ाएं दोस्ती का, अपनेपन का, मजबूत करें कौमी यकजहती को, मजबूत करें समाजी रिश्तों को, और मोहब्बत के लिए मुल्क से, कौम से, यानी तमाम इंसानों से मोहब्बत के लिए जो जज्बात हैं उनको फैलाने की जरूरत है।
1: तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कुर्बान कर दीजिए नफरत को, गुस्से को, हसद को, तशद्दुद को, खुदगर्जी को और लालच को।
0: नईम साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये सब कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं,
0: बहुत आसान है, बस हर इंसान को अपने तौर पर कोशिश करनी है। अगर हर फर्द ये प्रैक्टिस जारी रखे तो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम चीजों और जज्बों पर काबू पा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सभिया इस त्यौहार की असल स्प्रिट भी है, रूह भी है।
0: हमने तो देखिए बहुत सारी बातें अपने सामने इनसे की है, अब कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो एक नगमा भी सुनवा देते हैं।

0: मैं बिल्कुल वही बात समझा गया नईम साहब जो हम अपने सामने से कहना चाह रहे थे।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं सभिया। और ये तो था ईद उल अजहा का सामाजिक पैगाम।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए अब इसके मजहबी पस मंजर पर भी

ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। अमरीका ने अबनाए हुरमुस के नजदीक वाकई ईरानी फौजी अड्डे पर हमले किए हैं। बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक अफ्रीकी सेंटर्स ने कांगो में इबोला पर काबू पाने के लिए भारत की तरफ से भेजी गई इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए 69,50,00,000 अमरीकी डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अज़हा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। अमरीका ने अबनाए हुरमुस के नजदीक जनूबी ईरान में वाके स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में ईरानी फौजी अड्डे पर ताजा हमले किए हैं। अमरीकी

0: प्रोफाइल केस में सऊदी अरब की जेल में तकरीबन दो दहाई कैद रहने वाले भारतीय शहरी अब्दुल रहीम जेल से रिहा होने के बाद केरलम वापस आ रहे हैं। मजकूरा केस बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों की तवज्जो का मरकज रहा था। इसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरीद आज दुनिया भर में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनक्किद हो रही है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। फैमिली तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने हैदराबाद की एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी को एम्ड एजुटेक को इम्तिहानात की कॉपियां जांचने का कॉन्ट्रैक्ट देने से मुतालिक इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने कहा है कि ये इल्जामात गलत, गुमराहकुन और हकाइक पर मबनी नहीं हैं। बोर्ड ने कहा कि उसने एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने में जनरल फाइनेंशियल प्रोटोकॉल की सख्ती से पैरवी की है। उसने मुतला किया कि बोर्ड ने गुज़श्ता साल अगस्त में सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोर्ड इम्तिहानात के लिए आंसर बुक्स की डिजिटल तशखीस के लिए आरपीएफ पेश किया और अहल बोली दहिंदा को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि मरकजी और शिमाल मगरबी भारत में अगले दो रोज के दौरान शदीद गर्मी और लू के हालात रहने का इम्कान है। महकमे ने मशरक मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के सबब रेड अलर्ट भी जारी किया है। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रज्ञानंदा आर ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने तीन पॉइंट्स हासिल कर लिए। इस जीत के बरक्स आलमी चैंपियन डी कुकेश को अलीरजा से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल फाइनल में जगह बनाने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालिफायर टू मुकाबले में गुजरात टाइटंस के मध्य मुकाबल होगी। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में जगह बना चुकी है। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अमरीका ने आबनाई हुरमुज के नजदीक वाक़े ईरानी फौजी अड्डे पर हमले किए हैं। बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक अफ्रीकी सेंटर्स ने कोंगो में इबोला पर काबू पाने के लिए भारत की तरफ से भेजी गई इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। बैनुल अक्वामी मालियाती फंड आईएमएफ ने श्रीलंका के लिए 69 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है।

आमीन। अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म बहू बेगम में। लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में दो गाना। फिल्म है जमाना दीवाना। समीर के बोल को मौसीकी से सजाया है नदीम शरवन ने।

आइए सुनते हैं जमीर फिल्म से ये दो गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। और इस नगमे के साथ ही आज का मेरे सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत।

0: सिक्किम पुलिस को सदरे जमहूरिया के बावकार पुलिस कलर से सरफराज करेंगी। सिक्किम ये अवार्ड हासिल करने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरक की 3री रियासत होगी। सदरे जमहूरिया के पुलिस कलर मुल्क में पुलिस फोर्स की गैर मामूली खिदमात, जबरदस्त नज्म जब्त और कौम के लिए मुकम्मल तौर से वक्फ होने के एतराफ में दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। एसएसपी सतह के अफसर के क्यादत में 400 सिक्किम पुलिस अहलकारों का दस्ता सदरे जमहूरिया की मौजूदगी में परेड में हिस्सा लेगा। खारिजी उमूर के वजीर डॉक्टर एस जय शंकर यूरोपीय यूनियन वज़राए खारिजा की गैर रस्मी मीटिंग जिनमिच में शामिल होने के लिए कुब्रस पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारिजी उमूर की वजारत ने यूरोपीय कमीशन के नायब सदर काजा कलास और कुब्रस के वजीर खारिजा की इस दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खुसूसी पहल के तौर पर यूनेस्को के आलमी वरसे के मुकाम सांची स्तूपा के मुकद्दस बाकियात को मंगोलिया भेजा जा रहा है। ये बाकियात भगवान बुद्ध के दो अहम पैरोकार से ताल्लुक रखते हैं। आज इन बाकियात को पूरे एजाज के साथ भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से दिल्ली भेजा जाएगा। कल ये बाकियात आवाम के लिए नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय फजाइया का खसूसी तैयारा इन्हें मंगोलिया लेकर जाएगा। अफ्रीका सेंटर से फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अब भारत ने कांगो में इबोला की वबा पर काबू पाने की कोशिशों में मदद के तौर पर हंगामी अद्वियात की खेप भेजी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इथियोपिया के हेडक्वार्टर अफ्रीका सीडीसी ने कहा है कि भारत की जानिब से अतिया की गई अद्वियात की खेप युगांडा में उसके मशरकी अफ्रीकी इलाकाई राबता मरकज के जरिए मौसूल हुई थी। इस खेप में जरूरी तशखीस, इलाज, इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल का सामान और केस मैनेजमेंट सपोर्ट शामिल हैं जो मशरकी डीआर कांगो में मुतासर कम्युनिटीज में तैनात किए जाएंगे। अफ्रीका सीडीसी ने हंगामी फार्मास्यूटिकल की आमद और कांगो में बूंदी बुयोगी इबोला फैलने की रोकथाम के सिलसिले में जारी रद्दअमल की हिमायत करने के लिए हुकूमत और भारत के लोगों की तरफ से दिल खोलकर अतिया करदा सामान का खैर मुकदम किया है। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। भारतीय वफद की क्यादत मशरकी एशियाई मुल्कों के उमूर के शोबे के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष ने की, जबकि चीन की वजारत खारजा के बाउंड्री एंड ओशियानिक उमूर के महकमे के डायरेक्टर जनरल हु यानकी ने अपने मुल्क के वफद की क्यादत कर रहे थे। वजारत खारजा ने कहा है कि ये मुजाकरात तामीरी और मुफीद रहे। तरफैन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीके अमल की तरतीब और सरहद के दोनों जानब इश्तराक से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत ने बताया कि भारतीय वफद ने सरहद के आर पार बहने वाले दरियाओं से मुतालिक माहिरीन की सतह के निजाम के बारे में जल्द मीटिंग बुलाने पर जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने श्रीलंका के लिए 69 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर की किस्त जारी करने को मंजूरी दी है। IMF ने ऐसा अपने तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत किया है, बावजूद इसके कि श्रीलंका की जानिब से बैरूनी अदायगियों और ड्रग कंट्रोल से मुतालिक दो क्लीदी शराइत की खिलाफवर्जी की थी। IMF ने मजकूरा प्रोग्राम के 5वें और 6ठे जायजों की तकमील के बाद जारी करदा एक बयान में कहा कि श्रीलंका बैरूनी अदायगियों में नए बकाया जात न होने और दरामदी पाबंदियों के नफाज या सख्ती से बचने से मुतालिक मेयारात पर पूरा नहीं उतर सका। IMF ने बताया कि श्रीलंका के खजाने को निशाना बनाने वाले एक साइबर जुर्म के वाकये की वजह से श्रीलंका नवंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया को 20,50,000 अमरीकी डॉलर के कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया है। कोलंबो ने इस खिलाफवर्जी को मामूली करार देते हुए इससे इस्तेसना की दरख्वास्त की है और कहा है कि इस इसलाहात से मुतालिक इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हरनाल जिले के शाहरग इलाके में नामालूम मुसल्ला हमलावरों ने मुकामी लोगों के एक ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया। मुसल्ला हमलावरों ने शेख मूसा बाबा चौक पर एक चौकी कायम कर ली थी और वो राहगीरों की कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्त कार्ड्स की चेकिंग करते थे। पुलिस ने बताया कि जब कुछ मुकामी लोगों ने चेकिंग कराने से इनकार किया और मुजाहमत की तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भीड़ पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 4 मुकामी अफराद ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि एक बुरी तरह जख्मी शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जिसे इलाज के लिए क्वेटा ले जाया जा रहा था। इफ्तार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरा ईद आज दुनिया भर में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुनद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। एक हाई प्रोफाइल केस में सऊदी अरब की जेल में तकरीबन 2 दहाई कैद रहने वाले भारतीय शहरी अब्दुल रहीम जेल से रिहा होने के बाद केरला वापस आ रहे हैं। मस्कूरा केस से बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों की तवज्जो का मरकज रहा था। नॉर्वे चेस के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी और इस तरह उन्होंने 3 प्वाइंट हासिल किए। इस जीत के बरक्स आर्मी चैंपियन डी गुकेश को अलीरेजा फिरोजी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सख्त मुकाबले में हुए ड्रॉ के बाद फाइनल गेम में उन्हें इस हार का सामना करना पड़ा। 2 बार के पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में खेले गए 8वें इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप से 2026 में मर्दों के जेवलिन थ्रो F64 जोरे में आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 74.82 मीटर की शानदार थ्रो के साथ नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। हरियाणा की नुमाइंदगी करते हुए सुमित अंतिल ने तलाई तमगा जीता और अपना सबका 73.29 मीटर का आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जो उन्होंने 2022 के एशियन पैरा गेम्स में हांगजू में बनाया था। खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज के नजदीक वाके ईरानी फौजी अड्डे पर हमले किए हैं। बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक अफ्रीकी सेंटर्स ने कांगो में इबोला पर काबू पाने के लिए भारत की तरफ से भेजी गई इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। बैन अलाक्वामी मालियती फंड IMF ने श्रीलंका के लिए 69.50 करोड़ अमरीकी डॉलर की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। और आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा का त्यौहार जोशो खरोश व मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने आलमी नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का निर्माण किया था एनएन सिप्पी ने और फिल्म के निर्देशक रहे राजा नवाठे। 24 दिसंबर 1965 को ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म में मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार, नंदा, महमूद, प्राण, हेलन, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमल और मनमोहन। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एंड देन देयर वर नन से प्रेरित थी, लेकिन खास बात ये रही कि फिल्म को पूरी तरह भारतीय रंग में ढाला गया। गीत, संगीत, हास्य, रोमांस और रहस्य सब कुछ इतना खूबसूरती से मिलाया गया कि गुमनाम एक यादगार फिल्म बन गई।

0: व्यवसाय संबंधी सहायता पहुँचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीवी की हार।
1: मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12

0: से भी निश्चय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है गुमनाम। आपके साथ मैं हूं अर्चना गोयल। दोस्तों, गुमनाम फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें एक प्रतियोगिता जीतने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनका विमान रास्ता बदल देता है और वो पहुंच जाते हैं एक सुनसान द्वीप पर, जहां पर एक रहस्यमयी हवेली उनका इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बनकर आता है कि कातिल कौन है। फिल्म की यही बात दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। उस दौर में इतनी रहस्यमयी कहानी बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलती थी। और अब बात करते हैं फिल्म के सबसे दिलचस्प किरदार की, यानी महमूद साहब की। फिल्म में उनका बटलर वाला किरदार डर और कॉमेडी दोनों साथ लेकर आता है। उनकी अजीब हरकतें और संवाद दर्शकों को हंसाते भी हैं और शक में भी डालते हैं। उनका गाना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं आज भी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।

0: जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ?

ಬಾಲ ಚಂದಾನ ಏ 16 ಸಲ ಚಂದಾನ ಐ ತೇರೆ ಖಯಾಲ ಚಂದಾನ ಹಮ ತೇರೆ

मैं किधर तो जाता ही दंडाना, क्यों पास ना आता ही दंडाना, क्या मारी ये बाता दंडाना, दिल तोड़ ये घाता दंडाना। तो मैं किधर को जाता ही दंडाना, क्यों पास ना आता ही दंडाना।

जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

में माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ए तेरे हरीब है तंदाना। में माना गरीब है तंदाना, सूरत

दोस्तों, अगर होनाम की बात हो रही हो और जान पहचान हो का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जान पहचान हो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय डांस नंबरों में गिना जाता है। इस गाने में हेलेन का डांस इतना मशहूर हुआ कि सालों बाद हॉलीवुड फिल्म गोस्ट वॉक वर्ल्ड में भी इस गीत का इस्तेमाल किया गया। फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने दिया था। उस दौर में ज्यादातर फिल्मों में परिवार, प्रेम और सामाजिक कहानियां दिखाई जाती थी, लेकिन गुमनाम में सस्पेंस और हॉरर का नया रास्ता खोला। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रहस्यमय माहौल बनाने के लिए सेट पर रोशनी और ध्वनि का खास ध्यान रखा जाता था ताकि कलाकार भी उस डर को महसूस कर सके। फिल्म रिलीज होने के बाद लोग इंटरवल तक कातिल का अंदाज लगाते रहते थे, लेकिन क्लाइमैक्स आते आते कहानी ऐसा मोड़ लेती थी कि दर्शक हैरान रह जाते थे। मनोज कुमार ने फिल्म में गंभीर और समझदार किरदार निभाया। बाद में वे भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए। नंदा की मासूमियत और अभिनय ने फिल्म को भावनात्मक गहराई दी और प्राण साहब हर फिल्म की तरह यहां भी रहस्य पैदा करते नजर आए।

और दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने अपने मेल्स में कार्यक्रम के बारे में कुछ कहा है, तो आइए बढ़ते हैं उनकी तरफ। और ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, जलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अयुराज सिंह का। और ये मैसेज हमें भेजा है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने, और इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत भूषण, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, जालंधर, पंजाब से। श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, ग्राम पंचायत कालीगांव, जाफराबाद से। आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा। और ये लिख रहे हैं कि आज गुमनाम के गीत और कहानी सुन रहे हैं। फिल्म अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी और गीत सुनाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम को बड़े दिल से सुन रहे हैं। आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता पीपरिया से, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और अंकु राघव गुप्ता। गांव नथर पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी, जिला हिसार से। और ये है सुरसंगम रेडियो श्रोता संघ से, इन्होंने पूरी जानकारी फिल्म के बारे में दी है। आप हैं विरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और परवीन सुल्ताना, जलालाबाद बैस से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, नाभा जिला पटियाला से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, धर्मेन्द्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से, गांव नाहर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साथ। और आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से। और ये मैसेज आप हमारे पास पहुंचा है डोंडी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया का। आपके साथ हैं तुषार देव, टॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, पिछाई संसद मार्ग से अनिल मोहन, और नलिकेश्वर नगर नरवेल महाराज से पी एस नवाडकर, निर्मला नवाडकर और सोपान ताइड़े और नारायण इंगले, स्वर्ण सिंह गिल गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से, लालगिरी गोस्वामी, हिमलता हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, गुमनाम उस दौर की सफल फिल्मों में गिनी गई और आज भी इस हिंदी सिनेमा की बेहतरीन सस्पेंस फिल्मों में शामिल किया जाता है। इसके रहस्य संगीत और कलाकारों ने इसे अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस फिल्म की जिसमें रहस्य और संगीत की।

या टीवी पर दिखाई जाती है तो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इसी के साथ मुझे यानी अश्का गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक सही फिल्म नए किस्सों और नई यादों के साथ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार।

0: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएस की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विचंदी ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उस पर से ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असामाजिक नहीं छोड़ेंगे।
1: उन्हें क्या के पास है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के संस्थानों से दुनिया भर में कई संस्थानों ओ एस एम प्रणाली पर पात्र बनी है। उन्होंने कहा कि पहली बार है जब सीबीएसई

इसमें जब ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी धार्मिक श्रद्धा के उत्साह नाल मनाया जा रहा है। इस दिन बकरीद भी कहा जाता है। सवेरे ईदगाह के मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूजे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। राष्ट्रीय राजधानी

Bundesliga. Sondern in den Social Media Fortschrittswerken unter Asandatev Slavic Pajari, Akekuchi Vipalman, Sport Korea, Nasarin, Tengisheta, Sakota Vipalman, Jukri. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर में उन्होंने जयंती का श्रद्धांजलि प्रस्तुत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि वीर सावरकर की हिम्मत का देश करते हमेशा लोगों में प्रेरित करेगी। केंद्रीय खेती बाड़ी के किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि मेहनती किसान

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कविता शर्मा कतल केस में के सेवामुक्त जिला जज दिलीप भाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सेशन कोर्ट ने

दो बार में पैरालंपिक चैंपियंस सुमित अंकल ने बंगलुरु में अपनी इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्यम जैवलिन को F64 फिल्म के सोने का तमगा जीते हैं। सुमित ने 74.82 मीटर के सोना अपने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उसने 2022

0: अब ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं करीम अहमद। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और ओएसएम निजाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेज से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के प्रति ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला डीके शिवकुमार उनकी जगह लेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटजिक तौर पर अहम अगनाए हुरूज के नजदीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शुमाल मशरक की तीसरी रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज आवाम और खासतौर पर खवातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील

0: पर को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निमटने की गरज से तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निमटने में सिक्किम पुलिस के किरदार की सताइश की। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर गैर मामूली खिदमत, नज्म जब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला आला तरीन रस्मी एजाज है। इस दौरान सिक्किम को बाजाबता तौर पर एक मुकम्मल ख्वादा रियासत करार दे दिया गया है। यह ऐलान कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की मौसर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि मिशन का मकसद बुनियादी ढांचे की तश्कील से कहीं आगे की तरफ बढ़ना है और असल मकसद मुसलसल निगरानी, शहरियों की शराकतदारी और मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान तालमेल के जरिए ठोस नतायज को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली में 51वें प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो फजले को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट से और गोवर्धन प्लांटों समेत ठोस फजले के बंदोबस्त से मुतालिक बुनियादी ढांचे की तकमील के काम में तेजी लाएं। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने 9 रियासतों के लिए 30,000 करोड़ रूपये मालियत के रेलवेज, बिजली और सड़क के शोबों से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तवानाई के शोबे के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने शहरों, रिहायशी इलाकों और सरकारी इदारों पर खासतौर पर शहरी इलाकों में छतों पर शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कहा कि बिजली की कीमत में कमी लाने, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने, घरों और कम्युनिटी की सतह पर माहौल के लिए साजगार तवानाई को फरोग देने के लिए रूफ टॉप शमसी पैनल्स की तंसीबकारी के काम को मिशन की तर्ज पर किया जाना चाहिए। सड़क और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी के प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुए इस बात पर जोर दिया कि वर्धवन बंदरगाह को पोर्ट पर मबनी कचीर मॉडल तरक्की तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जहां हर तरह के ट्रांसपोर्ट को बिना रुकावट लॉजिस्टिक्स इको निजाम के साथ मजबूत किया जा सके। वजीर आजम ने दरियाओं को भामी तौर पर जोड़ने के प्रोजेक्ट केन बेतवा का जायजा लेते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट दीगर रियासतों के लिए एक मॉडल के तौर पर तामीर किया जाना चाहिए, जिन पर बैन रियासती पानी से मुतालिक मामलात को भामी तावन, बरवक्त मंजूरी, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी के निजाम के जरिए मिशन की तर्ज पर अमलावरी की जानी चाहिए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE की जानिब से नए मुतारफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम एक तरक्की पसंद वसीला है, जिसका मकसद ज्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में CBSE अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। OSM निजाम में खामियों और CBSE के 12वीं जमात के इम्तिहान के लिए अजसर नौ जांच के पोर्टल तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वजीर मसूफ ने इस बात का एतराफ किया कि बाज मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि असर नौ जांच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि अहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल जरूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदेही को बरकरार रखा जाए।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के वजीरे आला सिद्धारमैया आज सहपहर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। कर्नाटक के पार्लियामानी उमूर के वजीर HK पाटिल ने सिद्धारमैया की जानिब से तलब की गई ब्रेकफास्ट मीटिंग से रवाना होते हुए इस बारे में मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बताया गया है कि वो मुस्ताफी हो जाएं और वो बाकायदा लोकभवन में अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। उन्होंने मजीद बताया

0: डीके शिव कुमार वजीर आला की हैसियत से उहदा संभालेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नजदीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए जो स्ट्रेटजिक के तौर पर काफी अहमियत का हामिल है। आज सुबह सवेरे अमरीकी फौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक अमरीकी फौज और उसके तजारती जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने कल बीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। इंसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरा ईद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की। पेश है एक रिपोर्ट। बकरा ईद की नमाज अदा करने के लिए लोग नजदीकी मसाजिद में जमा हुए। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। रियासती सरकार की तरफ से सभी जिला पुलिस सरबराहान को एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई नई रिवायत शुरू न हो और मनुआ जानवर की कुर्बानी न की जाए। डीजीपी राजीव कृष्णा की हिदायत के बाद पुलिस ने हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यह त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेज से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के प्रति ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तिहान में जांच के अमल और ओएसएम निजाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफे का ऐलान किया है। नायब वजीर आला डी के शिव कुमार उनकी जगह लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: historic Taj Masjid for special prayers. The Imam prayed for unity, brotherhood and progress in the country. A heartwarming scene came from Indore. Following a 50-year-old tradition, a Hindu family welcomed the city Qazi with a garland of flowers. They then took him to the Eidgah in a decorated carriage. In Gwalior, people from other faiths also gathered outside mosques to greet the Muslim community. Meanwhile, the Madhya Pradesh Waqf Board has issued important guidelines for the animal sacrifice. People have been asked not to post photos or videos of the sacrifice on social media so that the communal harmony is preserved. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. The fragile ceasefire between the United States and Iran has come under severe strain after both sides exchanged military strikes near the strategically important Strait of Hormuz. The U.S. military said it shot down four Iranian attack drones and struck a drone control station in Bandar Abbas. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps confirmed the strikes and said it retaliated by targeting an American military base as Kuwait, a U.S. ally said. Earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and a mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. Sindhu defeated Japan's Riko Gunji in pre-quarterfinals of the women's singles round of 16. Lakshya sailed into the last eight after Thailand's world number two Kunlavut Vidithsarn retired hurt just moments into their round of 16 clash. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges police forces to be more citizen-centric and sensitive towards vulnerable sections. Education Minister Dharmendra Pradhan assures resolution of all grievances of students regarding discrepancies in CBSE Class 12 examination evaluation process. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah announces resignation. Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar set to take over. Fragile ceasefire between US and Iran under strain as both sides exchange fresh strikes near the strategically vital Strait of Hormuz. And in badminton, PV Sindhu and Lakshya Sen storm into singles quarterfinals of Singapore Open. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने इस्तीफे की घोषणा की उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे होर्मुज डलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश अब समाचार विस्तार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनके आंसर शीट उनके हाथ में आए ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है इसको मैं दायित्व लेता हूं उसको इसे ठीक करा जाए हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस भवन से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पारजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केन्द्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में तथ्य बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान

0: उनके विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बगली में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो क्षेत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्यौहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। आकाशवाणी समाचार कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और

और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और

0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तैशा कास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। हुर्मुज जलडमरुबंदी के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं आपका अपना कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी अपनी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बात होगी हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसकी मासूमियत, चुलबुलापन और खूबसूरत मुस्कान ने 1970 और 80 के दशक में दर्शकों का दिल जीत लिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आंखों में मासूमियत थी, अभिनय में सादगी और मुस्कान में अपनापन। जी हां, आज का हमारा खास कार्यक्रम समर्पित है अभिनेत्री विद्या गोस्वामी को।

मुनिया गोस्वामी का जन्म 4 जनवरी 1962 को हुआ। बहुत कम उम्र में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। कहते हैं कि बिंदिया की खूबसूरती और कैमरे के सामने उनकी सहजता ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर खींच लिया था। महज किशोर उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और देखते देखते वे 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। बिंदिया गोस्वामी ने उस दौर में काम किया जब हिंदी फिल्मों में रोमांस, पारिवारिक कहानियां और संगीत का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोलता था। उनकी जोड़ी कई बड़े अभिनेताओं के साथ पसंद की गई। उन्होंने विनोद मेहरा, शशि कपूर, जितेंद्र और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों के साथ काम किया। उनकी अदाकारी में एक घरेलू अपनापन था जिसकी वजह से दर्शक उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे।

दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि बिंदिया गोस्वामी ने बहुत कम समय में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन जितनी जल्दी वो फिल्मों में आई उतनी ही जल्दी उन्होंने फिल्मों से दूरी भी बना ली। कई लोग मानते हैं कि अगर वो लंबे समय तक फिल्मों में सक्रिय रहती तो वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती। उनका निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने अभिनेता विनोद मेहरा से विवाह किया था, हालांकि ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता से शादी की। जेपी दत्ता वही निर्देशक हैं जिन्होंने बॉर्डर और एलओसी करगिल जैसी बड़ी फिल्में बनाई। शादी के बाद बिंदिया ने परिवार को प्राथमिकता दी और फिल्मों से दूरी बना ली।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। और ये हमें मैसेज भेजा है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता ने, और ये लिख रहे हैं कि उत्तम बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाने जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। आप हैं नाहर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामो देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। और आप हैं इंद्रभान सिंह, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं बताया है। ये मैसेज हमें मिला है कुमार खेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का, और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। आप हैं वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जी हमें अपना संदेश भेज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विद्या गोस्वामी के ऊपर ये इन्होंने अपनी बता रहे हैं कि अगर आप चर्चा कर रहे हैं 70 और दशक 80 के दशक की मशहूर लोकप्रिय खूबसूरत अभिनेत्री विंध्या गोस्वामी और उनकी पहली फिल्म जीवन ज्योति की, और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, गोलमाल, खट्टा मीठा, प्रेम विवाह, दादा, उन्होंने 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर में जगह बनाई और विनोद मेहरा से पहली शादी की, वो ज्यादा दिन नहीं टिकी और दूसरी शादी उन्होंने निर्देशक जेपी दत्ता से की और कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। तो आपने भी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर, मन्नत और भारत मक्कर, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से अपना मैसेज हमें भेज रहे हैं। फारूक अली खान ने भी हमें अपना मैसेज भेजा है। हीरामणि वर्मा दत्रेगी भाटापारा से अपना संदेश भेज रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजबीर सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, बॉबी डॉली, बेबी पूजा, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, पाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी शिद्दत से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं। और अब सुनते हैं एक बहुत

विंध्या गोस्वामी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सहजता। वे बिना किसी बनावटी बन के अभिनय करती थी। उनकी मुस्कान और मासूम चेहरे

दर्शकों को बहुत आकर्षित कर लेता था। वे उन अभिनेत्रियों में शामिल रही जिन्होंने ग्लैमर के साथ साथ सादगी को भी पर्दे पर खूबसूरती से निभाया। दोस्तों, 70 और 80 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए बेहद खास था और उस दौर में कहानियों में परिवार का रिश्तों की मिठास थी और गीतों में दिल की भावनाएं। विद्या उसी दौर की प्रतिनिधि अभिनेत्री थी, उनके चेहरे पर मासूमियत थी और अभिनय में सच्चाई। यही वजह है कि आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।

बहुत कम लोग जानते हैं कि बिंदिया गोस्वामी फैशन और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी रुचि रखती हैं। हिंदी फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के बाद उन्होंने अपने परिवार और रचनात्मक जीवन को समय दिया। हालांकि वे लाइमलाइट से दूर रहीं, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें कभी नहीं भुलाया।

तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की उस मासूम और खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसने कम समय में ही दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। कुछ कलाकार अपने अभिनय से नहीं बल्कि अपनी सादगी और मुस्कान से याद रह जाते हैं, और बिंदिया गोस्वामी उन्हीं कलाकारों में से एक है। अब मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी हस्ती और नए किस्सों के साथ। नमस्कार।

मोहम्मद अजीज और साथियों को आपने सुना फिल्म थी हिना। अब सुनिए समान कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है जहां आरा।

अभी आप सुन रहे थे फीचर ऑन था ईद उल अजहा। तहरीर जनाब शमीम हैदर की थी। सदाकार थे सरफराज अहमद और एसएम शफीक। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब पेश हैं फिल्मी नगमे।

अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में नगमा लवर्स फिल्म से अभी आपने सुना। हमारी आज की प्रोग्राम की अगली पेशकश आवाजें कमलेश अवस्थी सुमन कल्याणपुर की हैं और फिल्म का नाम है नसीब।

हमेशा वसी अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आपने सुना नसीब फिल्म से नगमा। अब सुनिए अलका याग्निक और विनोद राठौड़ को, फिल्म है प्रेम ग्रंथ।

0: मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गुलामी फिल्म से ये नगमा आपने सुना। इसके साथ ही फिल्मी मौसिकी का आज का ही प्रोग्राम अब खत्म हुआ। हमारा आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेज से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और हसास तबकों के प्रति ज्यादा हसास रवैया इख्तियार करें। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई 12वीं क्लास के इम्तहान में जांच के अमल और ओएसएम निजाम में खामियों से मुतालिक तलबा की तमाम शिकायत को हल करने का यकीन दिलाया है। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी कशीदगी का शिकार है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबराए हुरमुज के नजदीक एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में मुनाक़िदा अलंकरण परेड के मौके पर सिक्किम पुलिस को बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से नवाजा। इसके साथ ही सिक्किम इस एजाज से सरफराज होने वाली मुल्क की 15वीं रियासत और शिमाल मशरिक की 30वीं रियासत बन गई है। इस मौके पर इजहारे ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वो शहरियों को ज्यादा अहमियत दें, नीज अवाम और खासतौर पर खवातीन, गरीब अफराद और बच्चों के मामलों में हसासियत का मुजाहरा करें। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर जराइम, ऑनलाइन धोखाधही और डीप फेक से मुतालिक खतरात से निपटने की गरज से हमेशा तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश की। रेजिडेंट्स पुलिस कलर, गैर मामूली खिदमात, नज्म व ज़ब्त और मुल्क के लिए खुद को वक्फ कर देने के एतराफ में पुलिस फोर्स को अता किया जाने वाला मुल्क का आला तरीन रस्मी एजाज है। इस दौरान सिक्किम को बाजाब्ता तौर पर एक मुकम्मल खानदा रियासत करार दे दिया गया है। ये ऐलान आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गैंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद के दौरान किया गया। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज तलबा को यकीन दहानी कराई है कि सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई की जानिब से नए मुतारिफ कराया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम निजाम एक तरक्की पसंद वसीला है, जिसका मकसद ज्यादा शफाफियत को यकीनी बनाना है। जनाब प्रधान आज नई दिल्ली में सीबीएसई अहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से गुफ्तगू कर रहे थे। ओएसएम निजाम में खामियों और सीबीएसई के 12वीं जमात के इम्तहान के लिए अक्सर एनओ जांच के पोर्टल में तकनीकी खराबियों से मुतालिक तशवीश के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने इस बात का एतराफ किया कि बाज मसाइल पैदा हुए थे। उन्होंने तलबा को यकीन दिलाया कि अक्सर एनओ जांच के जारी अमल के दौरान सभी शिकायतों का इजाला कर दिया जाएगा। जनाब प्रधान ने कहा कि अहदेदार इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी तलबा के मसाइल को हल जरूर किया जाए और सभी सतहों पर जवाबदेही को बरकरार रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में बहुत सी यूनिवर्सिटियों और इदारों के साथ साथ दुनिया भर के बहुत से इदारे ओएसएम निजाम अपना रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंगबंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुज के नजदीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहमियत की हामिल है। आज सुबह सवेरे अमरीकी फौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक अमरीकी फौज और उसके तजारती जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे। ईरान 5वें ड्रोन दागने की भी तैयारी कर रहा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपनी कार्रवाई को कतई तौर पर दिफाई बताया और जंगबंदी

बरकरार रखने का इरादा जाहिर किया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने बंदर अब्बास के नजदीक अमरीकी हमलों की तस्दीक की है और कहा है कि उसने अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि पासदारान इनकलाब ने जिस अड्डे को निशाना बनाया उसकी निशानदेही नहीं की है। दोनों मुल्कों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई से सिफारती कोशिशों को झटका लगा है जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अब भी जारी है। चार दिन पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों मुल्क मौजूदा जंगबंदी को 60 दिन तक मजीद बढ़ाने से मुतालिक माहदे को हतमी शक्ल देने के करीब पहुंच गए थे। अलबत्ता व्हाइट हाउस ने समझौते के एक मुसविदे से मुतालिक ईरानी सरकारी मीडिया के दावे को मुस्तरद कर दिया है और उसे पूरी तरह गलत बताया है, जिससे बातचीत के इम्कान कम होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने अप्रैल में हुई अलहदा जंगबंदी के बाद से लबनान में लोगों से अपने घरों से निकल जाने के सिलसिले में अपना सबसे बड़ा हुक्म जारी किया है। जनूबी जोरानी दरिया में तमाम शहरियों को हुक्म दिया गया है कि वो इसराइली सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर निकलकर फौरन शुमाल की तरफ चले जाए। इसराइल की फौज ने इस पूरे जोन को एक जंगी इलाका करार दिया है और कहा है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ इंतहाई कुव्वत के साथ कार्रवाई करेगा। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया है और अमन बरकरार रखने की गरज से की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। दोनों मुल्कों ने कल पीजिंग में भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक मुशावरत और तालमेल के लिए कायम वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान सूरत हाल का जायजा लिया। भारतीय वफद की क्यादत मशरकी एशियाई मुल्कों के उमूर के शोबे के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजीत घोष ने की, जबकि चीन की वजारत खारजा के बाउंड्री एंड ओशियानिक उमूर के महकमे की डायरेक्टर जनरल हु यांकी अपने मुल्क के वफद की क्यादत कर रही थी। वजारत खारजा ने कहा कि ये मुजाकरात तामीरी और मुफीद रहे। तफेल ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीके अमल की तरतीब और सरहद के दोनों जानिब इश्तराक से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि भारतीय वफद ने सरहद के आर पार बहने वाले दरियाओं से मुतालिक माहरीन की सतह के निजाम के बारे में जल्द मीटिंग बुलाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने सिफारती और फौजी सतहों पर बाजाबता तबादले और रवाबित बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इसार और कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा या बकरीद आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ईदगाहों और अहम मसाजिद में ईद की नमाज आज सुबह अदा की। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कौमी राजधानी दिल्ली में ईद की खसूसी नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में अदा की गई। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद में मनाई जाती है जब वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया ने आज बकरीद के त्यौहार के मौके पर खसूसी इंतजाम किए हैं और इस त्यौहार के लिए एहतियाती इकदाम किए हैं। ईद उल अजहा का त्यौहार बांग्लादेश में भी जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है, जहां मुल्क के करोड़ों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और इशार और जज्बे से जानवरों की कुर्बानी की। श्रीलंका में भी मुस्लिम बिरादरी के लोग मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ आज ईद उल अजहा का त्यौहार मना रहे हैं। ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिले। भारत ने आज सिंगापुर ओपन में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के अलावा चिराग शेट्टी और सत्विक साईराज रांकी रेड्डी की मर्दों की जोड़ी और ध्रुव कपिला और तानिशा क्रेस्टो की मिक्स जोड़ी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। जापान के शहर काकामिघारा में कल से शुरू होने वाले 18 साल की उम्र तक के एशिया कप हॉकी 2026 में भारत की हॉकी टीम मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। मर्दों के मुकाबले में उसे पूल ए में रखा गया है, जिसमें मेजबान जापान, कोरिया, चीनी ताइपी और कजाकिस्तान शामिल है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्सेस से अपील की है कि वो शहरियों पर ज्यादा तवज्जो दें और असाध तबकों के प्रति

प्यार एक बहु वड़ी नियामत है। प्यार किता नहीं रहिंदा, ए थिंदा है। नजदीकियां प्यार विच बदल वेंदियां हैं, ते दूरियां आते मिट वेंदियां हैं। इस प्यार विच बोली, धर्म, जात, रंग दी कि थाई छा नहीं। जरूरी नहीं रंग गोरा थी वे, सामने रंग विच भी खूबसूरती लुकी थींदी है। गल ता प्यार दी है। जडन हां को कोई चंगा लगेंदा है ना, ता मन करेंदा है कोल कोल बहवण दा, गाला करेंदा। गल ता हां को चंगी लगेंदी है, भावे उदे नैन नक्श की हो जाएगी होवन, रंग केहो जिहा भी थी वे। प्रोग्राम दा अगला गीत मैं तुहा को कुछ इसी तरह दा सुनवेंदी पई हां। गीत है, मैं आप में रंग दी सावली, मेरा यार भी रंग दा सावला। भाई वाह, फिर तो बहुत सोनी जोड़ी है। आओ गीत दी चस गिनो।

गाए, बन गाए, काने,

उन्होंने कई मुश्किल दिन देखे। जेल विच उन्होंने बहुत सारे कवितावां ते लेख लिखे। कहा जाता है कि कई बार कंधा उत्ते लिख के कवितावां याद करते सन। उस समाजिक सुधारां दे भी हमायती सन। छुआ छात के खिलाफ भी उन्होंने अपने जीवन काल च गल की थी। आजादी तो बाद भी उन्होंने विचार भारतीय राजनीति विच चर्चा का केंद्र बने रहे। केंद्रीय सावरकर पहले भारतीय क्रांतिकारियों विचों सन जिन्हों ने विदेश विच बैठ के भारत की आजादी के लिए वड्डा जाल तैयार किया। 1910 विच जदों उन्होंने जहाज राही भारत लिया जा रहा सी तां उह फ्रांस के मार्सेई बंदरगाह ते जहाज के बाथरूम की खिड़की तो समुद्र विच छाल मार के उन्होंने भजन की कोशिश भी की सी। उह बहुत वधिया कवि ते लेखक भी सन। उन्हां दीआं कवितावां च देशभक्ति की भावना भरी हुंदी सी। सावरकर ने हिंदू समाज विच एकता की गल की ते कई समाजिक सुधारां नूं भी समर्थन दिता। उह मंनदे ने कि देश नूं मजबूत बनाउण लई नौजवानां नूं शरीरक ते मानसिक तौर ते तैयार होना चाहीदा है। सैलुलर जेल दे विच रहिंदिआं होइआं उन्होंने अपने साथी कैदियों नूं हिम्मत दित्ती ते उन्हां दे अंदर देशभक्ति का जज्बा भी उन्होंने जिउंदा रख्या। उन्हां दे समर्थक उन्हां नूं निडर क्रांतिकारी मानदे ने जबकि विरोधी उन्हां दीआं राजनीतिक सोचां नाल असहमत रहे। वीर सावरकर ओह क्रांतिकारी सन जिन्हां ने काले पाणी दी सजावां सह के देश दी आजादी दा सुपना कदे भी नहीं सी छड्डिआ। काले पाणी दीआं सलाखां भी वीर सावरकर दे हौसले नूं कैद ना कर सकियां। जेल दीआं कंधां दे उत्ते आजादी दे उन्हां ने सुपने लिखे। वीर सावरकर दा नाम भारतीय क्रांति दे इतिहास दे विच हमेशा याद किया जाता रहेगा। सावरकर एक ऐसे क्रांतिकारी सन जिन्होंने हथियारबंद संघर्ष नूं आजादी की लड़ाई का हिस्सा मनिया। कहा जाता है कि जेल विच उह कंधां ते कोले दे नाल भी कवितावां लिखते रहे। उन्होंने बारे एक गल ए भी दसी जाती है कि वह बहुभाषी व्यक्ति सन। उन्होंने मराठी हिंदी ते अंग्रेजी लिखद्या भी देखा गया। उन्होंने अपने जीवन काल दे विच जात पात दे विरुद्ध भी आवाज चुकी ते समाजिक समानता दी भी गल कीती। लंदन दे विच इंडिया हाउस दे नाल ओ जुड़े रहे जो कि भारतीय क्रांतिकारियां दा एक महत्वपूर्ण केंद्र सी। सावरकर दी सोच सी कि भारत नूं मजबूत ते आत्मनिर्भर बनना चाहीदा है। 1966 विच उन्होंने आत्मरापण दा राह चुनिया जिस विच उन्होंने खाना पीना छड़ दिता सी ते कुछ समय बाद फिर उन्हां दा देहांत हो गया। वीर सावरकर एक ओ व्यक्ति सन जिन्हां नूं अंग्रेजा ने 50 साल की सजा सुनाई पर उन्हां दा हौसला एक दिन भी कैद ना हो सकिया। देश लई जीउणा भी इबादत है अते देश लई सहना भी शौहरत है। यह वीर सावरकर दा मनना सी। वीर सावरकर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं एक जज्बे की कहानी है। जंजीरां हथां नूं बन सकदियां ने पर विचारां नूं कदे नहीं बन सकदियां। इस गल नूं अपने जीवन काल दे विच साबत कीता वीर सावरकर दे हिम्मत दे हौसले ने ते देशभक्ति ने। 28 मई नूं उन्हां दा जन्म होया सी 1883 नूं महाराष्ट्र दे विच ते अज है 28 मई। सो उन्हां दे अज जन्म दिन ते असीं उन्हां दी देशभक्ति नूं याद करदिआं होइआं सलाम करदिआं। वीर सावरकर वर्गे देशभक्तां ने ही देश नूं अज आजादी दवाई है ते इन्हां दे जिंदगी दे इह फलसफे आउण वालियां पीढ़ियां दे अंदर हिम्मत ते हौसला हमेशा बरकरार रखणगे। समें ने सी अज दी गल जिस विच अज असीं याद कीता महान देशभगत वी डी सावरकर नूं। वादियां सामिन अपने अगले सिलसिले वल। साडा अगला सिलसिला प्रोग्राम माझे दी महक।

प्रोग्राम चल रहा माझे की महक अज इस प्रोग्राम दे विच असी गल करांगे माझे की धरती दे विच जन्म लैण वाली उस धी दी जो कि भारतीय मूल की मशहूर फिल्म डायरेक्टर ते स्क्रीन राइटर बनी जो अपनियां वखरियां वखरियां समाजिक मुद्दे ते आधारित फिल्मां दे लई जानी जांदी है। नाम है दीपा मेहता। दीपा मेहता का जन्म 15 सितंबर 1950 नूं अमृतसर दे विच होया सी। उसके पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर सन जिस कारण उन्हां दा रुझान छोटी उम्र तो ही फिल्मां वल हो गया। बाद विच ओह कैनेडा चली गई अते उत्थे फिल्म मेकिंग दे विच उसने अपना नाम बनाया। दीपा मेहता अपनी एलीमेंट्स ट्रिलॉजी दे लई बहुत मशहूर है। फायर अर्थ वाटर यह तीन फिल्मां समाजिक अते मनुखी मुद्दियां नूं बहुत गहराई दे नाल दर्शाउंदियां ने।

कमल खान की आवाज के विच हुणे तुसीं गीत सुनिया। प्रोग्राम चल रहा माजे दी महक। गल कीती अज इस प्रोग्राम दे विच दीपा मेहता दी, जो एक ऐसी डायरेक्टर सी जिसने समाज दे चुप दर्द नूं कैमरे दे विच कैद कीता, जिसकी हर फिल्म एक नवी चर्चा छेड़ी। दीपा मेहता दी फिल्मां मनोरंजन तो वध इक अनुभव हुंदियां ने। जिथे समाज दी अखां मुंदियां उथे कैमरा चलाया दीपा मेहता ने। प्रोग्राम दे खीर दे विच सुनदे आं एमी विर्क दी आवाज दे विच ए गीत।

सुगम संगीत प्रोग्राम दे विच हुणे तुसी गुरदीप सिंह नूं सुणिया। वादे अपने अगले सिलसिले वल सामिन, साडा अगला सिलसिला तमन्ना। तमन्ना दे तहत सानू फरमाइश भेजी है तजिंदर कौर थिंद होना ने जलंधर तों, कहंदे ने नछत्र गिल दी आवाज दे विच गीत सुना दिओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारामैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के तीन दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के सीआरआई औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हो चुके हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम।
1: तो पहले बहन हम हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के, और देखिए आज हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं एक रेडियो रिपोर्ट ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कंपेरिजन 2026। तो सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
2: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन 28 मई से 29 मई 2026 तक NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में किया जा रहा है। आज दिनांक 28 मई 2026 को इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्यों के कृषि मंत्रियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICAR, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। राष्ट्रीय खरीफ अभियान 2026 सम्मेलन देश के कृषि क्षेत्र की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम के स्वागत अभिभाषण में श्री आतिश चंद्रा सचिव कृषि मंत्रालय ने दो दिनों के सम्मेलन की रूपरेखा और ये सम्मेलन किन मायनों में खास है ये बताते हुए कहा,
3: आदरणीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री भगीरथ चौधरी जी, यहाँ उपस्थित ICAR के DG एवं सेक्रेटरी डेयर डॉक्टर ML जाट जी, एडिशनल सेक्रेटरीज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मनिंदर प्रमोद एंड अंकिता, ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय, यहाँ उपस्थित राज्यों से आए सभी सचिवगण, वरीय अधिकारीगण, कृषि विभाग और ICAR के अधिकारीगण। देखिए, इस साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आयोजन है, इसका डे वन थीमेटिक डिस्कशंस के लिए डेडिकेटेड है और सेकेंड डे में हम पॉलिसी लेवल डिस्कशंस करेंगे। तो डे वन में अभी इनॉग्रल फंक्शन है, इसके बाद हम लोग तीन थीम्स पर आज का डिस्कशन उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो पहली थीम है वो आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो सेकेंड थीम है वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और जो थर्ड थीम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये ब्रॉड थीम्स पर हम स्टेट वाइज इसमें डिस्कशन होगा। जैसे डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन ग्रोथ में हमने वो स्कीम्स ली हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड भारत सरकार की डिफरेंट इंटरवेंशन हैं और स्कीम्स हैं। जो थीम टू है वो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और उसमें खेत बचाओ एक अभियान हम लोग जो शुरू करेंगे 1 से 15 तारीख तक, उसके बारे में भी इसमें चर्चा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट है वो कवर करता है फार्म क्रेडिट, KCC सैचुरेशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, PM आशा जिससे हम दलहन तिलहन का प्रोक्योरमेंट करते हैं। जो कल का कार्यक्रम है वो ये है कि सुबह तो इनॉग्रेशन का एक पोर्शन है, उसके बाद आज की जो डिस्कशन होंगे उसका समेशन होगा हमारे और DGICR के द्वारा, कि हम लोग आगे के जो खरीफ मौसम में जो प्रिपरेशन के लिए आवश्यक क्रॉप एडवाइजरीज है उसके बारे में प्रेजेंटेशन होंगे। उसके बाद फिर हम लोग ने थीम्स रखे हैं जिसपे हमारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार की प्रायोरिटी और फ्लैगशिप स्कीम्स है उस पर प्रेजेंटेशन करेंगे, और वो कवर करेगा पल्सेस का और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पे उसमें क्या प्रगति हुई है और क्या हमारी अपेक्षा है। उसके बाद एक विशेष सत्र रखा गया जिसमें माननीय गवर्नर गुजरात श्री आचार्य देवव्रत जी आएंगे और उनका नेचुरल फार्मिंग पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं माननीय मंत्रीगण कल उपस्थित होंगे उनके हम लोग सुनेंगे, और समेशन फिर लास्ट में हमारे मंत्रीगण लोग करेंगे। तो ये कल की एक डिटेल रूपरेखा है। देखिए, मेरा आप लोग से यही अपेक्षा है कि अभी देख लीजिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और क्या चैलेंजेस नेशंस को आ रहे हैं। एग्रीकल्चर हमारा बहुत स्ट्रांग बैकबोन है हमारी कंट्री का। हम राज्यों के साथ मिलके हम लोग काम करें, माननीय मंत्री जी का डायरेक्शंस है कि स्टेट्स की इश्यूज को बहुत सीरियसली टेकअप किया जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
2: महानिदेशक ICAR और सचिव डेयर डॉक्टर मांगीलाल जाट ने अपने संबोधन में कहा,
4: माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम कृषि की, उसने जो किया है कि इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन 376.6 मिलियन टन एवर हाईएस्ट। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि पिछले साल और उससे पिछले साल दो साल में हमने 40 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया है और मुझे नहीं लगता कि 20 मिलियन टन एवरेज की स्पीड से कभी भी प्रोडक्शन बढ़ा होगा। इस प्रोडक्शन के बढ़ने में टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉलिसी सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ये भी है, वन टीम वन नेशन वन एग्रीकल्चर, जो ये टीम एग्रीकल्चर है, ये सब इकट्ठा होके और मंथन करके और एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है और मुझे लगता है उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, कुछ आंकड़े जो हमें 47 तक चाहिए फूड ग्रेन में ऑलरेडी अचीव कर लिया। मुझे लगता है राइस का आंकड़ा तो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा डायवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने सारे देश का डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अभी एनालिसिस चल रहा है, कहां अपॉर्चुनिटी है। हमें राइस 50 मिलियन हेक्टेयर नहीं चाहिए, हमें राइस 2047 में 35 मिलियन हेक्टेयर ही चाहिए। 15 मिलियन हेक्टेयर को लोड शेड करना है तो वो कहां हो सकता है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता अलग अलग तरीके से है। जो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, यदि हम 15 मिलियन हेक्टेयर लोड शेड कर दें राइस से, ऑयल सीड पल्सेज में ले जाते हैं, तो एक तरफ हमारी पल्सेज ऑयल सीड की आत्मनिर्भरता होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो उसमें फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हो रहा है उसको कम करके भी हम कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्स्ट में हमें मल्टीप्रोन्ड स्ट्रेटेजी भी काम करने की जरूरत है, जिसपे हम काम कर रहे हैं। हमें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंट ब्रीडिंग प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी टारगेटिंग डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण कड़ी है सीड की, और आज भी मुझे लगता है कि यदि हम क्वालिटी सीड किसान तक पहुंचा दें तो हमारा 15% 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, और उसके लिए हम लोग सब मिलके, हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्टेट के फार्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज के फार्म्स हैं, हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूशंस के फार्म्स हैं, मुझे लगता है उन सबको सीड के लिए यूज करने की जरूरत है, उसकी भी एक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। एक्सटेंशन जैसे पहले था वो बदलने की जरूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, मुझे लगता है हम सब लोगों को, और काफी एआई भारत विस्तार जो लॉन्च हुआ उसके साथ में और भी चीजें, लेकिन वो सारा जो एआई है उसके बैकग्राउंड में डाटा इंपॉर्टेंट है, और डाटा इकोसिस्टम डेवलप करना, रोबस्ट डाटा इकोसिस्टम डेवलप करना, मुझे लगता है ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सॉयल हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है, लेकिन सॉयल हेल्थ पे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं है, हमें फिजिकल और बायोलॉजिकल के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है इसी सीजन में हमें शुरू करना, हमारे अपने सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक के सोर्सेज हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जितने भी हैं इंडिजिनस जितना मटेरियल है, हमें 2047 में खाद आयात ना करना पड़े, उस दिशा में काम करने की भी जरूरत है, तभी हमारी जमीन भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी।
2: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए अपने संबोधन में कहा,
5: देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है, और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले हैं। उद्यम का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। खाद्यान्न का उत्पादन हो, फलों का हो, सब्जियों का हो, दलहन का हो, तिलहन का हो, किसान दिनों रात मेहनत करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में हमने कई योजनाएं किसानों के लिए बनाई हुई है, और वो योजना सीधे केंद्र इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन राज्य के माध्यम से ही हमको करना

0: वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, और इस टीम ने बेहतरीन काम किया है। सबसे बड़ा योगदान किसानों का है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अभी जाट साहब बता रहे थे खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, कल हमने तृतीय अनुमान जारी किए हैं। मुझे सिर्फ दोहराते हुए खुशी है, इस वर्ष जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित जो है 3,765.63 लाख टन है, जो पिछले साल की तुलना में 188 लाख टन अधिक है। यह अब तक का रिकॉर्ड है, और इसके लिए मैं भारत के किसानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में, बढ़ते तापमान में, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में उन्होंने अद्भुत परिश्रम किया है। हमारे आईसीआर के वैज्ञानिक मित्रों को भी आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। हमने जो अलग अलग किस्में बीजों की विकसित की है, अलग अलग जो कृषि की पद्धतियां बनाई है, उसका भी इसमें अतुलनीय योगदान है। हमारे आईसीआर के कई संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में भी मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तो साफ कहता हूं गड़बड़ है तो ठीक करना चाहिए उसको, उनके भी हम समीक्षा करेंगे। बहुत बेहतर काम हुआ है बीच। मैं राज्य के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, आपने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि केंद्र कहां काम करेगा, हम तो राज्य को सहयोग करते हैं, कृषि राज्य का विषय है, लेकिन आगे करने की गुंजाइश बहुत है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं गेहूं और चावल भंडार भरपूर है, देशवासियों चिंता मत करना, दुनिया में कितना भी बड़ा संकट आ जाए भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, भंडार भरे हुए हैं हमारे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन दलहन तिलहन हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों मंगाए बताओ हम, क्यों हम इंपोर्ट करें? हमारे किसान में सामर्थ्य है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमको बैठ के यही विचार करना है। आज हम बैठेंगे ग्रुप्स की बात पर, तीन ग्रुप में बैठेंगे, उसमें दलहन तिलहन मिशन पर भी बात होगी, आत्मनिर्भरता कैसे। कई मॉडल आईसीआर ने बनाए लेकिन वो मॉडल अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे अलग अलग गतिविधियों में किसान को लगा पाए ताकि उसकी आमदनी बढ़े। भाई अन्नदाता सुखी भवा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन उसकी भी तो हालत सुधारना है जो दिनों रात मेहनत कर रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे आपके विचार चाहिए मुझे। एक राज्यों को जिस पर काम करना है वो नकली पेस्टिसाइड, खाद और पेस्टिसाइड अगर कोई नकली बेचता है तो पाप करता है, अपराध करता है, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। इसमें बड़ी भूमिका राज्यों की है। पहले भी मैंने कहा पेस्टिसाइड एक्ट, सीड एक्ट, इस पर तैयारी चल रही, सलाह मशवरा विचार विमर्श चल रहा है, वो भी लाएंगे, लेकिन हमारे पास जो आज मौजूदा व्यवस्था उसके अंतर्गत गड़बड़ करने वाले को ठीक करने का काम हमको करना ही पड़ेगा। बीज सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग विचार कीजिए, सब सीड रोलिंग प्लान कैसे उसको ढंग से इंप्लीमेंट करें। माफ करना, कई बार तो मिनी किट बीज के पटते हैं जब बोनी हो जाती है पूरी। अभी हमारे पास समय है, ये इस समय पूरी तैयारी करें, क्योंकि मानसून आने में भी देर है, और इस समय मैं तो कहता हूं अगर जमे तो खेत बचाओ कार्यक्रम में ही सीड मिनी किट का वितरण हो जाए, बीज के टाइम पे पहुंचाए। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो, राज्य के हमारे बीज निगम हो, या बाकी एजेंसीज हो, ये प्लान पूरा बनना चाहिए, सही समय पर सही बीज पहुंच जाए किसान के पास। आखिर हमारा काम किसानों का हित है, इसलिए उस व्यवस्था को हम कैसे ढंग से बनाए। एक बात और जिस पर विचार, फार्मर आईडी का टारगेट पूरा करना है। भाई कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ राज्यों में अभी शुरू होना है, और इसलिए फार्मर आईडी मतलब एक फार्मर आईडी है तो कई योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी को किसान को दिया जा सकता है। इस काम में पूरी ताकत के साथ जुटे। अभी केसीसी भी बाकी है, हमारे लगभग 7 करोड़ के आसपास केसीसी बने हैं, अभी लगभग 7.5 करोड़। आपको पता है योजनाओं को अब काफी लचीला कर दिया गया है, आरकेबीवाई और कृषि उन्नत की 18 योजनाएं। आपको जरूरत है 2 योजनाओं की 3 योजनाओं की, आप ले लो पूरा पैसा उसमें, अब ये लचीलापन है। हर एक राज्य का मेरे मित्रों हमें कृषि रोड मैप बनाना है, हर एक राज्य, हम पूरा सहयोग करेंगे। आज आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है, और उसके साथ साथ फसलवार भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर है, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के हित ऐसी है, लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं। कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी, संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। अंधाधुंध क्यों चाहिए? मिडिल ईस्ट के संकट के कारण दिक्कतें भी है, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी उपलब्धता में, लेकिन भाई जितना जरूरी उतना ही डालो ना। तो उसके लिए खेत बचाओ अभियान गांव गांव जाना है, वो पूरी ताकत से करना, मैं भी जाऊंगा भाई। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाए, आईसीएआर की टीम, केवीके की टीम, कृषि विभाग के राज्य का अमला, एक्सटेंशन का आपका अमला पूरा, प्रगतिशील किसान, एफपीओज, पैक्स के लोग मिलकर हमको प्रयत्न करना पड़ेगा।
1: खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन एक विकसित भारत और समृद्ध किसानों की परिकल्पना के अनुरूप एक टिकाऊ, सशक्त और किसान केंद्रित कृषि इकोसिस्टम के निर्माण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसी के साथ खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार, संयोजक शरणन लाल, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
2: तो अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों ने सुनी ये रेडियो रिपोर्ट और एक बातचीत भी हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं। सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती, बुवाई की उन्नत विधियां, और इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर
3: आंचल दास, और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली से शशि कपूर की बातचीत।
4: राम राम किसान बहन भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन का पोषण महत्व तो बहुत ज्यादा होने के कारण आजकल सोयाबीन का दूध प्रयोग में किया जाने लगा है। सोयाबीन पनीर टोफू की भी वर्तमान में बहुत मांग है, लेकिन ये सब काम होंगे तब जब आप सोयाबीन का उत्पादन करेंगे यानी कि खेती करेंगे। तो सोयाबीन की खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी इसकी किस्में होती हैं जिनका आप बिजाई कर सकते हैं, और इसके पोषण का महत्व क्या होता है, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, खेत की तैयारी आप कैसे करें, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंचल दास जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं आईसीएआर आईएआरआई नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: बहुत धन्यवाद।
4: तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी जानना चाहेंगे कि पोषण महत्व कितना ज्यादा है सोयाबीन का।
5: सोयाबीन का पोषण महत्व बहुत अधिक है, इसको पोर मैन्स मीट भी कहा जाता है और इसको साथ में गोल्डन बीन भी कहा जाता है। तो इनको इतना ज्यादा महत्व देने का कारण यह है कि सोयाबीन का जो दाना है उसमें 40-45% तक प्रोटीन होता है, 18-22% उसमें ऑयल होता है या उसको हम तेल कहते हैं, तेल होता है, और साथ में इसमें पोषक तत्व होते हैं 4-5% मिनरल्स रहते हैं उसमें, साथ में विटामिन रिच होता है, विटामिन से पूरा ये डेंस रहता है, राइबोफ्लेविन और थायमिन जैसे इसमें विटामिन रहते हैं, और विटामिन ई भी इसमें पाया जाता है। साथ में सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, इंसानों के लिए ही उपयुक्त नहीं है, लाभदायक नहीं है, ये हमारी भूमि जहां पे इसको उगाया जाता है उसके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसकी जड़ों में कुछ ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, जिसकी ये कैपेसिटी है कि जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, नत्रजन है, उसका स्थिरीकरण करता है और भूमि को उर्वरता शक्ति है बढ़ाने में काम करता है। साथ ही में जब वो सोयाबीन पक जाती है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगती हैं, तकरीबन 1-1.5 टन तक तो उसकी पत्तियां ही हैं, जिसमें वो भी न्यूट्रिएंट रिच रहती है, उसमें पोषक तत्व रहते हैं, उस पूरे जीवन में मिलते हैं, और ये एनिमल की फीड के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मैं कहूंगा इसका बहुत ज्यादा महत्व है पोषण के हिसाब से।
4: तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए भी पोषण के लिए बहुत अच्छा है सोयाबीन, और साथ ही साथ हमारी जो खेती है उसकी मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका सोयाबीन निभाता है। अगर हम बात करें अपने देश की तो कहां कहां पर सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है?
5: सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, जो कि टोटल प्रोडक्शन का 45% मध्य प्रदेश से आता है, और 40% जो उपज है सोयाबीन की वो महाराष्ट्र से आती है, साथ में कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इनको पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो असम, मेघालय में, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आदि स्टेटों में इन सोयाबीन को उगाया जाता है।
4: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, तो जो सही समय है कब तक इसकी बिजाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिस खेत में वो सोयाबीन करना चाहते हैं तो किस तरह से खेत का चयन करें।
5: बुवाई का समय सोयाबीन का अलग अलग इलाकों में अलग अलग से होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो उसमें मई से जून के अंदर इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। अगर हम उत्तरी मैदानी इलाकों की बात करें तो 15 जून से 5 जुलाई तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो उसमें 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक इसकी बुवाई हम कर सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो 15 जून से लेकर हम 31 जुलाई तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। लेकिन बुवाई करने से पहले हमको खेत का चयन करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर तो हर तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो भूमि है वो रेतली दोमट से दोमट मिट्टी, जिसमें जल निकासी पर्याप्त हो, और इसको काली मिट्टी, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में जो कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, उसमें भी सोयाबीन को अच्छे से उगाया जा सकता है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें जल निकासी का प्रबंधन अच्छे से किया हो, और जो सॉइल का पीएच है हाई नहीं होना चाहिए, 6 से 7.5 तक पीएच की है, तो उसमें इसको आराम से अच्छे से उगाया जा सकता है।
4: डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमने जो खेत का चयन भी कर लिया है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने खेत से तो अच्छे बीज की भी आवश्यकता होती है, अच्छी किस्म की आवश्यकता होती है। तो सोयाबीन की किस्मों के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं?
5: अगर आपका बीज अच्छा है तो आपकी फसल भी अच्छे से हो सकती है। और किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि जो बीज है वो प्रमाणित सेंटरों से ही लें, यूनिवर्सिटी से, केवीके से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहां से बीज लें। और साथ में जो इसकी किस्में हैं, हर किस्म को हर जगह नहीं उगाया जा सकता। अगर हम उत्तरी पहाड़ी इलाकों की बात करें, हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, इन इलाकों में पालम सोया, हरा सोया, बीएल सोया 2, बीएल सोया 47, या कुछ पंजाब की वरायटी भी है जैसे SL 958, SL 744, आदि किस्मों को उसमें उगाया जा सकता है। और अगर हम उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उसके लिए जो किस्में हैं, Pusa 97, Pusa 12, PS जो पंतनगरी वरायटी है, PS 26, PS 27, PS 1347, और हम थोड़ा नीचे जाएं, मध्य भारत की ओर जाएं, तो इसके लिए JS 9305, NRC 30, NRC 37, NRC 130, NRC 138, NRC 142 आदि किस्मों को अच्छे से उगाया जा सकता है। और हम और नीचे जाएं, दक्षिण भारत में जाएं, तो उसमें भी JS 9305, साथ में हम उसमें MACS 1460, MACS 1281, 1288 और DSB 34 आदि किस्मों को उसमें उगाया जा सकता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो उसमें DSB 21, JS 93-5, JS 97-52, DSB 32 आदि किस्मों को हम उगा सकते हैं।
4: बिल्कुल, बहुत ही उन्नतशील किस्मों के बारे में आपने बताया है। अब बात आती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, किस्में ले आए हैं अच्छी उन्नतशील, तो खेत की तैयारी भी आवश्यक हो जाता है। तो खेत की तैयारी कैसे करें, उस समय किस तरह से खाद का प्रबंधन करें, और साथ ही साथ बीज उपचार का कितना महत्व है?
5: देखिए, सोयाबीन के लिए बीज उपचार का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप बीज का उपचार नहीं करेंगे तो कीट और फफूंद जो बीमारियां हैं, फंगल बीमारियां हैं, वो उसमें लगती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो महीन दानों वाली जो किस्में हैं, उसके लिए 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपने बीज लगाना चाहिए। अगर मध्यम साइज की वेरायटी है, किस्में हैं, तो उसमें 70 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर मोटा दाना है तो उसके लिए 80 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको बीज की मात्रा।
2: तो पायल बहन, अभी हमारे भाई सभी भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत, सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती, बुवाई की उन्नत विधियां, और इसकी जानकारी ली डॉक्टर आंचल दास, जो कि प्रधान वैज्ञानिक पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शशि कपूर। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल, और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:30:14 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली कव्वाली जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये हमने लिए है।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

ये जो अभी आप कव्वाली सुन रहे थे, इसको स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने और संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। फिल्म है अमर अकबर एंथोनी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक और गजल फिल्म उम्र आप जान से। गायक कलाकार हैं बेला सुलाखी।

0: मेला सुलाखे के स्वर में अभी ये गजल आपने फिल्म ओबराब जान से सुनी, और इसी के साथ गजल कब्बाली का ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली एनसीआर में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र

0: और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भरसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर को जाम मुक्त, यातायात को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विस्तार सड़क 2 के माध्यम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिससे पश्चिमी दिल्ली और गुरुग्राम से उत्तराखंड तक सीधा संपर्क मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को शहरी विस्तार सड़क 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे भारी वाहनों का बेहतर डायवर्जन होगा और जाम में कमी आएगी। वहीं एम्स से गुरुग्राम तक 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे धौलाकुआं और महिपालपुर क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य दिल्ली को विश्व स्तरीय हरित और जाम मुक्त बनाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। दिल्ली भाजपा कार्यालय पर श्री मल्होत्रा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दायित्व उनके लिए संगठन और जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण तथा प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा दिल्ली के विकास में पूर्ण निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी को श्री मल्होत्रा के अनुभव से फायदा होगा।
2: पार्टी में हर दायित्व बड़ा होता है और ये जो दायित्व हर जी को मिला है कि उनको अनुभव बहुत है, प्रशासनिक भी है और संगठन का भी है, तो निश्चित उनके अनुभव का लाभ भी मिलेगा और पार्टी को ऊंचाइयों तक वो उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे।
0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से दिल्ली में भाजपा को नई ऊर्जा मिलेगी और जनसेवा के कार्यों को और सशक्त बना सकेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज देश की लोकतांत्रिक विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकलन जारी किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र संवाद, बहस, सहमति और असहमति पर फलता फूलता है। इस अवसर पर 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के संकलन का विमोचन किया गया। श्री बिरला ने कहा कि ये संग्रह आने वाली पीढ़ियों और लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिए एक सार्थक मार्गदर्शक साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र वैश्विक मंच पर एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण मात्र 11 महीनों में 22 एकड़ क्षेत्र में किया गया था, जो आज भी आश्चर्य का विषय है।
3: वैसे इन्होंने एक साल में इसकी सुंदरता को, हमारे इतिहास को ये पूरा जीवित करके रख। तो यहाँ पे जब बच्चे हमारे जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जब वो आके इस पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, हम सब आपके ऋणी हैं स्पीकर महोदय कि आपने छोटा काम नहीं किया। ये सब कहीं पे किसी कमरे में धूल मिट्टी खा रहा था, आप उसको लेकर आए, आपने उसको पढ़ा, आपने टीम लगाई और आपने इतिहासकार लगाए, उसके बाद में ये सारे इतिहास को संयोजना, उसको लेकर आना छोटा काम नहीं है और वो भी इतने कम समय में, इसलिए हम सभी आपके प्रति ऋणी रहेंगे।
0: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये सदन देश की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाल ही में प्रदर्शित डॉक्यूमेंट्री इस बात की पुष्टि करती है कि ये सदन ऐतिहासिक महत्व रखता है।
4: जो सदन है एक ऐतिहासिक स्थल, जनवरी 1926 में पहली परंपरा विट्ठल भाई पटेल जी ने अध्यक्ष

0: बनने के बाद जो स्थापित की, हर वर्ष वायसराय साल के पहले सिटिंग पर सदन को एड्रेस करने आते। मित्तल भाई जी अध्यक्ष थे, उन्होंने वायसराय को मैसेज किया कि वो आने से पहले ये विचार कर ले कि जो परंपरा थी मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ। परंपरा ये थी कि जब वायसराय आते थे तो अध्यक्ष जाकर नीचे बैठ जाते थे, खड़े होकर उनका स्वागत करते थे बाकी सदस्यों के साथ, और मंच पर सिर्फ एक कुर्सी रहती थी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि मैं इस सदन का कस्टोडियन हूँ, इसलिए मंच पर एक नहीं दो कुर्सी लगेंगी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर वहां चल रहे पुराने कचरे के बायो माइनिंग और बायो रेमिडिएशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट पर स्थित कूड़े के विशाल पहाड़ समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुराने कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस अवसर पर छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता, मानसिक सशक्तिकरण और स्कूलों में बेहतर सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्राओं के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भूमिका केवल प्रशासक की ही नहीं बल्कि अभिभावक की भी होती है। उन्होंने कहा कि कई छात्राएं मासिक धर्म के दौरान असहज महसूस करती हैं और ऐसे समय में उन्हें संवेदनशीलता, विश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है।
2: दिल्ली सरकार ने स्कूलों में स्वच्छ टॉयलेट, मेडिकल रूम और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी स्कूलों में साफ सुथरे शौचालय और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक शौचालय और आरोग्य मंदिर में लगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनों की नियमित मेंटेनेंस और समय पर रिफिल सुनिश्चित के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे दिल्ली में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कक्षा 6 से 9 तक के पाठ्यक्रम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद दिल्ली सरकार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल भी उपलब्ध कराएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी यादव।
1: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण केंद्र सरकार के निर्धारित वित्तीय ढांचे, तकनीकी दिशा निर्देशों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया गया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण और उन पर किए गए व्यय को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट पर सरकार ने कहा कि यह दावा गलत है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तय सीमा से ज्यादा खर्च हुआ है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मॉडल के तहत हर केंद्र के लिए भवन सुधार पर 25 लाख रुपए और फर्नीचर तथा जरूरी सुविधाओं के लिए 1 लाख रुपए तय हैं। सभी काम इसी निर्धारित बजट के भीतर किए गए हैं। विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली में कुल 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनः मूल्यांकन पोर्टल में OSM प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा

सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनः निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया है कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा है कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upseonline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य नमाज ईदगाह जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में अदा की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये पर्व समाज में शांति, भाईचारे और करुणा की भावना को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सावरकर जी ने भारत माता के अनन्य भक्त, एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और अदम्य साहस के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र सर्वप्रथम के संकल्प, सांस्कृतिक गौरव और अखंड भारत की भावना को समर्पित था। उर्दू साहित्य की एक महान आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके परिवार के अनुसार उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें आज भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा है और राजधानी में आज शाम कुछ इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली एनसीआर में निर्बाध यातायात के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई आधुनिक सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष मनोनीत। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरा प्रबंधन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यही आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम है बरसात की रात और इसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

गीतमालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चेतन के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म श्री 420 से। बड़े कलाकार हैं लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी।

संसरी 420 से बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जो कि हमने लिया है, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और ये इसी फिल्म का शीर्षक गीत है और इसको आवाजें दी है अलका याग्निक और साथियों ने और संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: आदमी खिलौना है, इसी फिल्म के शीर्ष संगीत के साथ ये मेघमाली का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर-17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना।

0: हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। आइंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ मानिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कागज कलम नहीं।

0: जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। F-CAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मार्केट्स लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस

0: गहरे सन्नाटे में डूब गए जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: लगते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
0: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुँचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज़ भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
2: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाये रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
3: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत से लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्र में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
2: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक नेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य के सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार 20 मिनट पर ईद उल अज़हा के मौके पर एक तकरीर हम आपको सुनवाएंगे बउनवान कुर्बानी और उसका फलसफा। मुकर्रर हैं जनाब सैयद मोहम्मद अज़हर शाह। नौ बजकर 45 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और 9:55 मिनट पर कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। सिलसिला है सेहत के मशवरे। रात 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम हरफ सुखन और 10:30 पर फरमाइश फिल्मी नख्मों का प्रोग्राम पेश होगा तामिले इरशाद। तामिले इरशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। दौरान प्रोग्राम 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बड़े सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। सुर्खियों में यह प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 11:30 पर और 11:45 पर। क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम बज्म मौसीकी में आप सुनेंगे उस्ताद रहीमुद्दीन खान डागर का गाया राग बागेश्वरी में आलाप और धमाड़। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशे की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे पंडित रामजी लाल शर्मा का पखावज पर बजाया धमाड़ ताल और सूल ताल। शब के 12:30 बजे आखिरी शब प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शब 1 बजे उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये था एक मुख्तसर तारुफ से मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: हूँ वीर शिखा जारिकत किलो हर्ष मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटी फेडरेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस से। ईद उल अजहा के मौके पर तकरीर सुनिए कुर्बानी और उसका फलसफा, तहरीर जनाब सैयद मोहम्मद अजहर शाह की।
1: लफ्ज कुर्बानी के मफहूम को समझने के लिए उसके महले इस्तेमाल की चंद मिसालें मुलाहिजा फरमाइए। कहा जाता है कि फला आदमी ने अपनी औलाद की तरबियत और परवरिश और गौर व पर्दाख्त में बड़ी कुर्बानी से काम लिया और उसे पढ़ा लिखा कर बना संवार कर काम का आदमी बना दिया। यहाँ कहने का मकसद ये होता है कि बाप के पास कोई बड़ा माली सरमाया नहीं था, लेकिन उसने अपनी थोड़ी बहुत आमदनी में किफायत शारी से काम लिया, बुरा भला खाया, अच्छा बुरा पहना और अपना पेट काट कर और तकलीफें उठाकर बच्चों को आला तालीम दिलवाई। यहाँ कुर्बानी के लफ्ज से मफहूम यह पैदा हुआ कि बाप ने अपनी राहत और आराम को औलाद के फलाह और बहबूदी पर कुर्बान कर दिया। सब मुसीबतें सही मगर औलाद के लिए एक बावकार और बाइज्जत जिंदगी फराहम की। कहा जाता है कि फला आदमी ने अपने रोजगार और माश के लिए बड़ी कुर्बानी दी, अपने मुल्क के महदूद वसाइल से उसे आसूदा हाली नसीब न हुई तो पासपोर्ट और वीजा के सैकड़ों झगड़ों का मुकाबला करके

बेहतर है मेरा मरना इस तरह के जीने से, बेहतर है मेरा मरना

0: को कम करने और इसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और जहां तक निज़ाम हाजमा की बात है, तो चूंकि इसमें फाइबर्स वाफर मकदार में होते हैं, इसी वजह से ये आपके निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करते हैं, कब्ज को दूर करती है और इसके जो कसैलापन इसके अंदर होता है, देखिए कुदरत ने हर चीज में एक फायदा रखा है, वो कसैलापन जरूर है इसके जायके में, लेकिन ये इन्फेक्शन को दूर करता है पेट के और दस्तों में राहत देता है। आपका पेट खराब हो जाए, डायरिया हो जाए, दस्त हो जाए, तो उसमें ये राहत मिलती है जामुन के खाने से। और रही बात जनाब बीमारी से लड़ने की ताकत, जिसे हम इम्यूनिटी के नाम से जाते हैं, यानी कुव्वत मुदाफियत, उसमें ये इजाफा करती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मकदार में पाए जाते हैं। और यही वजह है कि इसके इस्तेमाल से आप बीमारी से लड़ने की जो ताकत आपके अंदर है, उसमें इजाफा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जनाब आपकी स्किन की, आपकी जिल्द की, तो इसके एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट जो गुण हैं, जो सिफात हैं, वो खून साफ करने में मदद करते हैं, जिससे आपके चेहरे पर निखार आ जाता है और मुहासों की परेशानी भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा इसके खाने के बाद आपकी जबान जो है बिल्कुल बैंगनी कलर की हो जाती है, और वो बचपन की वो यादें भी ताजा कर देती है, जब वो बैंगनी जबान जो है मैं अपने दोस्तों को दिखाकर चिढ़ाया करते थे, और वो बहुत ही एक उम्दा मतलब एहसास था, लेकिन जायका भी था उसके साथ साथ। और खासतौर पर वो अफराद जो वजन घटाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर्स बहुत ज्यादा मकदार में होते हैं, जिससे पेट लंबे वक्त, यानी कि आपका जो मैदा है वो लंबे वक्त तक भरा हुआ महसूस होता है, इसी वजह से आपके वजन पर जो है कंट्रोल्ड रहता है, और ये वजन को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं जामुन। अब जामुन की तासीर क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है जनाब। तो जामुन की तासीर की जहां तक बात है, ये ठंडी होती है इसकी तासीर, इसलिए इसे गर्मी के मौसम में खाना सबसे अच्छा माना जाता है, और इसे हमेशा काला नमक लगाकर खाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसका जायका जो है उसमें इजाफा हो जाता है, साथ ही ये हजम होने में भी आसान हो जाता है। और ख्याल रहे, खाली पेट जामुन का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसे खाने के फौरन बाद कभी दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा माहिरीन का कहना है। तो ये थी बातें जनाब उस फल के हवाले से, जिसे हम जामुन के नाम से मौसूम करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत बैंगनी कलर का चमकदार ये फल आजकल आपको बाजारों में बाकायदगी से दिख जाता है, और बहुत ही, चूंकि इस वक्त मौसम है, और हम दोस्तों अगर बात करिए अपने आकाशवाणी की, तो हमारे आसपास इतने जामुन के पेड़ हैं, जब हम यहां टहलते हुए कभी कभी आते हैं और खरामा खरामा, तो देखिए आप कि जगह जगह जामुन के पेड़ के नीचे उसके निशान भी मिल जाते हैं, और बहुत सारे जामुन भी मिल जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे कई बार उनको इकट्ठा करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये तो थी बातें जनाब जामुन के हवाले से, आज मशवरे सेहत के सिलसिले में बस इतना ही, आइंदा फिर होगी आपसे मुलाकात। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत प्रोग्राम हर्फ सुखन,
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है प्रोग्राम हर्फ सुखन। हर्फ सुखन में हम पेश करते हैं शायर का तारुफ और फिर उनकी एक मुंतखब गजल को गुलकार और गुलकारा की आवाज में। हर्फ सुखन में आज के शायर हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, और आखिर में डॉक्टर बशीर बद्र। आइए हम पहले बात करते हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की। दुनियाए शायरी में असदुल्ला खान गालिब का नाम नुमाया हैसियत रखता है। उनकी मौजूआत अंदाज़े बयान ने तमाम शोरा में उन्हें मुनफरिद मकाम अता किया। गालिब का दौर उर्दू शायरी का वो दौर था जब मीर, सौदा और दर्द की शायरी की गूंज सारी फिजा में मौजूद थी। साफ और सादा अशार पसंद किए जाते थे, लेकिन गालिब ने फारसी के मशहूर शायर बेगिल के तर्ज को पसंद किया और इस तर्ज ने गालिब को मुश्किल पसंदी की तरफ मायल किया, जिसका इतराफ गालिब ने खुद इन अल्फाज में किया है। तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां

और आज के दूसरे शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र। गजलगोई की दुनिया में बशीर बद्र एक ऐसा नाम है जिसके अशार 70 की दहाई में मशहूर होना शुरू हो गए थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे और शायरी भी कर रहे थे। आले मसरूर, खुर्शीदुल इस्लाम जैसे उस्तादों से दाद भी ले रहे थे। रिसालों में बाकायदा शाया होने की वजह से अदबी दुनिया से उनका तारुफ एक नए और मुनफरिद शायर की हैसियत से बराबर हो रहा था। उनका शेर उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, खवास के साथ साथ अवाम तक पहुंच चुका था। वो दौर नज्म का दौर कहा जा सकता है। फिल्मी दुनिया में साहिर, शकील और अख्तरुल ईमान, निदा फातली ने बड़े पाये की नज्में पेश की थी। ऐसे में बशीर बद्र ने गजल का दामन ही थामाए रखा और ऐसे नए और दौरे हाजिर के मजामीन नर्म और दिलकश लहजे में पेश किए कि बहुत जल्द उन्हें मुशायरों में भी दावत सुहन मिलने लगी। चंद मुशायरों की शिरकत के बाद उनका एतमाद बढ़ा और उसमें उन्होंने थोड़ा सा इंकसारी का रंग शामिल किया और कुछ अदाओं की आमेजिश की और फिर खूब खूब वाह लूटी। और आने वाले वक्त में वो अंदरून मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क के एक कामयाब शायर कहे जाने लगे। बशीर बद्र के अशार में सादगी और आम फहमी भी है और साथ में गहराई और फिक्र अंगेजी भी। उनके कलाम का एक हिस्सा है, सादगी देखना हो तो ऐसे बहुत से अशार मिल जाएंगे। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, और फिक्र अंगेजी ऐसी कि अपनी ही आरजू, अपनी ही जस्तजू मुझको मुझसे बहुत दूर करती गई, और कुछ लोग मंजिल नशीं हो गए मेरे नक्शे कदम देखते देखते। बशीर बद्र ने गजल की मुरवजा हयात और असालीब को अपने अंदाज से थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, मौजूआत में भी जसारत दिखाई मगर गजल के गनाई लहजे में इजाफा ही किया। वसीम बरेलवी ने एक जगह कहा है कि फूलों से महवे गुफ्तगु होने, रंगों से उनकी जुबान से बातें करने, खुशबुओं से उड़ने, चांद से पैंग बढ़ाने और चांदनी से खेल खेलने की चाह में उनकी जमालियाती हिस ने वो असलूब पा लिया जो तासुर और तासीर नए बाप वाह करता नजर आता है, मगर साथ साथ दर्दमंदी की जेरी लहर भी चलती रही जो बार बार कारी के एहसास तक दस्तक देती है। बशीर बद्र ने खुद जदीद गजल के

सुपर मकाला भी लिखा जिससे उनकी शायरी में और निखार पैदा हुआ और फन के पैमाने में उनकी तासीर के जौहर खुलकर सामने आए। बशीर भट्ट की शायरी में एहसास के नजाकत और नुजरत की ऐसी हसीन मिसालें हैं जिनको सुनकर इंसान देर तक सोचता और मुस्कुराता रहता है। जिस पर हमारी आंख ने मोती गिराए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। कैसा नाजुक एहसास है और कैसी खूबसूरती से बयान कर दिया गया है। जमाने की बदलती कदरें, नया मिजाज और तहजीबो आदाब के नए ढंग देखना हो तो बशीर भट्ट का कलाम पढ़कर देखिए, बहुत लुत्फ आता है। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। अंदाज़े बयान और लफ्जों की कारीगरी ऐसी कि कोई लफ्ज वजाहत तलब नहीं, जो पढ़े वो समझ ले, और क्या कहने ऐसे शायर के जो खास व आम के समझ में आ जाए। यही वजह है कि बशीर भट्ट के कलाम को इस दौर के तकरीबन हर गुलूकार ने अपने मुंतखब अंदाज से पेश किया है। समाप्त फरमाइए बशीर भट्ट का कलाम चतुर सेन की आवाज में।

प्रोफेसर सुखन के आखिरी शायर हैं रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, जिनका शुमार उर्दू के चंद नुमाया शायरों में किया जाता है, जिनका मुताला बहुत वसी है, जिन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू कई जुबानों के अदब को गहराई से पढ़ा है, उसे जज्ब किया है और फिर अपने तजुर्बात का हिस्सा बनाकर अपने अंदाज में उर्दू शायरी में उसे पेश किया है। वो एक नुमाया नज्म निगार और बेहतरीन गजल गो शायर माने जाते हैं। उनकी शायरी में ख्वाह वो नज्म हो या गजल, एक नएपन का एहसास होता है। ये फिराकी थे जिन्होंने हसरत फानी जोश के रहते हुए अपनी अहमियत मनवाई। उनके साथी जिगर, अजगर और इसी पाए के कई और शुरा थे जो फिराक गोरखपुरी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। सादगी ख्वाह वो अल्फाज की हो या ख्याल की, किसी भी शायर को मकबूलियत बख्शती है। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, कितना लतीफ एहसास है, इसे आप देर तक महसूस कर सकते हैं। फिराक गोरखपुरी के यहाँ हिंदी शायरी की रवायत पाई जाती है, जिसमें कबीर, तुलसी, सूर और मीरा के मुताले का अक्स मौजूद है, और अंग्रेजी अदब में वो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैले जैसे शुरा से इस्तेफादा करते नजर आते हैं। उनके यहाँ फारसी और संस्कृत और अदब की चाशनी भी मौजूद है। इल्म के ऐसे बेशबहा खजाने ने फिराक की शायरी को ऐसी अजमत और हर दिल अजीजी बख्शी कि उन्हें उनकी शेरी तख्लीक गुले नगमा को पहले साहित्य अकादमी अवार्ड और फिर अदब का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ से नवाजा गया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। फिराक की शायरी में आप ये महसूस करेंगे कि रिदम के साथ साथ गनायत भी है। फिराक गोरखपुरी की शख्सियत और शायरी में जो बात खसूसियत से उभर कर सामने आती है वो ये कि उन्होंने इल्म के समंदर को खूब खंगाला, फिर अपनी शायरी का रास्ता उन्होंने खुद बनाया। उर्दू की क्लासिकल शायरी को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने लिए फारसी से ज्यादा असर हिंदी लफ्जियात से लिया और अपनी शायरी में हिंदुस्तान की गंगा जननी तहजीब को पेश किया। उनकी बहुत मशहूर नज्मों में आधी रात, परछाइयां उर्दू अदब के बेहतरीन शहपारों में शुमार की जाती हैं। एक मौजू को चंद लफ्जों में ऐसे पिरो देना जिसमें वैसे तो वजाहत के लिए कुछ भी नहीं, मगर तशरीह करने बैठो तो जिंदगी के पूरे फलसफे का निचोड़ मिलता है। ये माना कि जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं ये चार दिन भी। ऐसा लगता है कि हर बड़ा शायर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हुए भी मुमासलत रखता है। हर बड़े शायर को अपनी अजमत का अंदाजा होता है, उसमें खुद एतमादी इस हद तक होती है कि वो अपनी बड़ाई बताए बगैर नहीं रह पाता। अगर गालिब ने अपने अंदाज बयान की इनफरादियत पर फख्र किया है तो फिराक भी अपनी शख्सियत की सिफात बयान किए बगैर नहीं रह सके हैं। आने वाली नस्लें खुद पर फख्र करेंगी हम असरो, जब ये ध्यान आएगा उनको हमने फिराक को देखा था। और बेशक जिन्होंने फिराक गोरखपुरी के साथ शब रोज गुजारे हैं और जिन्होंने उनको देखा है, आज वो खुद पर फख्र करते महसूस होते हैं। इस अजीम शायर की गनाई गजलों को बहुत से गुलकारों ने गाया है और मकबूल भी हुई है और आवाम के दिलों तक पहुंची है। नर्म फिजा की करवटें दिल को दुखा के रह गईं, ठंडी हवाएं भी तेरी याद दिला के रह गईं, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। पेश खिदमत है फिराक गोरखपुरी का कलाम जयश्री गुप्ता की आवाज में।

बागी फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। असद जयपुरी का लिखा हुआ, चित्रगुप्त की थी मौसीकी और इस नगमे को हमारे काफी सामने ने सुनना चाहा था, उनके नाम भी हम जरूर शामिल करना चाहेंगे। और वो तमाम सामीन जो बहुत पहले से ईमेल कर देते हैं, थोड़ा सा इंतजार किया कीजिए दोस्तों, और 10:30 पर जब आप ईमेल करते हैं तो ज्यादा मुनासिब होता है, और बहुत पहले से ईमेल आपका पीछे छूट जाता है। बहरकैफ आज का जो पहला ईमेल है वो मुख्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर और रवनीत निशु का, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार साथ में उनके बिट्टू कुमार, इसी नगमे को सुनना चाहते थे एसएम जावेद, शगुफ तंजुम टावर चौक गुमला झारखंड से, वेमगाम गुजरात से फरमाइश की थी अजीत भावसार, प्रमला भावसार और अहले खाना ने, आप हैं कलवई नगर से दोपहरा टाउन से ईद की मुबारकबाद के साथ जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान, आपको भी ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक दोस्त, और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष की फरमाइश भी थी, और इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी थे आनंद राज सागर, तरुलता सागर चांदखेड़ा अहमदाबाद से, और ये फरमाइश ईमेल दिल्ली से मिला है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब है, और आप हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज और अहले खाना, शब्बीर हुसैन वजू बाबा और शहजाद की फरमाइश थी सब्जी मंडी बुलडाना से, आप हैं नई दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविन्द्र सिंह छाबड़ा, और पश्चिम थोक गंज डोंडवारा से मनोवर लल्ला पीरजादा, नसीन मिर्जा और बाद शहबाज की फरमाइश भी थी, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंडे, शीला देवी शिंडे और अहले खाना। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सभी की नजरों।

एक मध्यम सी रोशनी नजर आई आसमां पर। लोगों ने कहा कि ये ईद का चांद है, पर लगा मुझको वो मुखड़ा तेरा।

और अब आपको सुनाते हैं तालिशात प्रोग्राम में बरसात की रात फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। रोशन की है मौसीकी और साहिल लुधियानवी ने इस नगमे को लिखा और सुनने के ख्वाहिशमंद आप तमाम सामईन मुकेश शर्मा, साथ में गौरव गरिमा शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से, और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसूर शाहिन हसन और नाजिया का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारी का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आपने फरमाइश हमें साल की है और चंडीगढ़ सिटी से सुनने के मुंतजिर सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सुब्रत चौधरी साहब कोलकाता से, और ईद उल अजहा की मुबारकबाद आपने भी दी है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जनाब। सागर एमपी से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, जयपाल यादव। और अगला फरमाइशी मेल नेहरू चौक पैठण से मिला है हमारे सामने डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव, पीएस नाहौकर, निर्मला नाहौकर, असोपान है नालेश्वर नगर नरवेल से। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं राजू माठे, गजानन माठे और ज्ञानेश्वर माठे जलगांव जामोद खामगांव से। अगला ईमेल आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मिराज जहां का। इसी नगमे को सुनने के मंतजर हैं मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और कुमकुम। और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं तो आपको करते हैं हम साइडलाइन। हाथ चाहते नहीं थे कि ईद के दिन आपको साइडलाइन किया जाए, लेकिन क्या करें जनाब, आप मजबूर कर देते हैं। गार्ड के नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे। खांजी पीर उदयपुर से फरमाइश की जब्बार मोहम्मद, अजीब खान और अशरफ खान ने। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति और उत्कर्ष चौहान। सरलाही सोकनाहा नेपाल से फरमाइश की अरुण कुमार शर्मा, रेणुदेव शर्मा, राहुल कुमार शर्मा ने। और आप हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, साथ में है वेदिका अहमदपुर खेगांव खंडवा से। और खंडवा से एक और ईमेल है घंटाघर चौक से संजय पांचोलिया, प्रियंका पांचोलिया, संप्रीत पांचोलिया और गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप की फरमाइश है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। और गांव हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से सुनने के मुतमन्नी अगले नगमे को राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

0: और ये सुनिए लीडर फिल्म का दुगाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। शकील बदायूं ने इसे कलमबंद किया, मौसिकी नौशाद साहब की है।
1: आज कल शौक दीदार है

बात तो बिल्कुल जायज है कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। नया खूबसूरत नगमा था मेरे महबूब फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूं ने का लिखा हुआ, और मौसीकी की जहां तक बात है तो नौशाद साहब की थी। ये आप और हम बखूबी जान गए होंगे और जानते भी हैं। एक और नगमा आप तक पहुंचाते हैं, और ये नगमा है मदर इंडिया फिल्म से, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले, शमशाद बेगम की आवाजों में शकील बदायूं ने का लिखा हुआ। यहां भी मौसीकी नौशाद साहब की है, और इन दोनों नगमों की मिलीजुली फरमाइश अब हम शामिल करना चाहेंगे। ये फरमाइश मौसूली पश्चिमी दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डी के अलवी की, और आप हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, शिवांश वर्मा, पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, और मोहम्मद फरमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलमान की फरमाइश दूलापुर मुरादाबाद यूपी से मिली है। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर थे फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, दूलापुर गांव मुरादाबाद से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, साथ में सोनू सुरेश, और ये फरमाइश आई है उन दोस्तों की जिनके नाम हो गए कुछ देर पहले शामिल। मनिया सरदना मेरठ से हैं अनिल जैन, संयम जैन, मास्टर जीवीएम जैन, और ये फरमाइश ई मेल मौसू हुआ। छत्तीसगढ़ डोगरगांव से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, अनिष्का तन्मय का, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, उज भट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा हबीबा हैं पटियाली रोड गंज टुंडवारा से, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है। व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही और राजश्री का, और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर थे देवगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोराट, कविता थोराट और श्रेया थोराट। रूपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई की फरमाइश थी परभनी महाराष्ट्र से। मोहम्मद रफीक पवा, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसन पवा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से सुनना चाहते इस नगमे को। और अगले नगमे के लिए फरमाइशें हैं बागारपैर शिगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद रिजवान, और आप हैं एटा रोड गंज टंडवा से फैसल शेख, कैसा शेख और अरीब शेख, और नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पूनाराम देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से। सुनने के मंतजर अगले नगमे को लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, अनिंदा भगत, पूर्णा भगत और सुलोचना, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से, माफ कीजिएगा, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और साथ में है अनंता भगत। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से फरमाइश की है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और हसन नवाज ने, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजे नासिर और साजिद शाहिद। सुदर्शन शाह, पल्लवी और प्रखर की फरमाइश है नेपा नगर पद्मा टॉकीज से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं विनोद मूरत, नेहा जैन और दीपक मूरत, बोरखेड़ा उज्जैन से, और ये फरमाइश आई है मोहम्मद जाकिर मसूरी, कमरुन्निसा शबिस्ता की, बाजार रोड मुंगीसापुर से। अगले नगमे को आपने भी सुनना चाहा है मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, साथ में दानिश शेख, गंज टंडवारा यूपी से, और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा की जानिब से। राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, छत्रपति संभाजी नगर से, और सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से फरमाइश की है गजन नेले, नवदीप एले और सुशील येले ने। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं नई दिल्ली राजौरी गार्डन से ध्वनि और सानवी, और यह फरमाइशी ईमेल मौसम

गुरुवान दोस्तों हैं जिनके नाम अभी कुछ देर पहले हमने शामिल किए। गुवाहाटी असम से हैं हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या। और अगला ईमेल है सदर बाजार कुरवली से अनिल कुमार वर्मा, मायदेवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा का। सुरेश गौड़ तन्मय पूर्वी गौड़, सुरेश पवन गौड़ है आवास विकास कॉलोनी कासगंज से। और इसी नाम को सुनना चाहते हैं वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रमेश्वर वाड़े, छोटू साक्षी, किशन सपकाल, आशा सपकाल, विशाल सपकाल की फरमाइश है शास्त्री नगर बीड शहर से। अगला ईमेल भी रिपीट हो गया, इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा जनाब। और एक के बाद एक दो ईमेल रिपीट। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, निर्वृत्ति शेरसागर, संजय कुमार चौहान। और आप हैं रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये फरमाइश आई है विजय पाटिल के महाराष्ट्र के जालना से। और पद्माबाई पाटिल भी इसमें है, चिरंजीव ध्यानेश्वर का नाम भी शामिल है। नीचे नाम मुख्तलिफ है और ऊपर मुख्तलिफ। नूर महल मैसौल, सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरत जहानाज भी सुनने के मुंतजिर हैं अगले नगमे को। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा मदर इंडिया फिल्म से।

0: दुख भरे दिन भी तेरे भैया सब सुख आयो रे
1: मगर इंडिया फिल्म के इस नाटक को आपने भी पसंद किया। करण मीर हाउस बुचो कैचा बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा और साथ में कुलदीप और उनके अहले खाना बाटापारा छत्तीसगढ़ से बचकमल डॉक्टर बसंत भिगो मोतीलाल यादव की फरमाइश भी थी इस नकमे के लिए और ईद की मुबारकबाद यहाँ भी जारी है। बहुत शुक्रिया जनाब। बन्ने बुजुर्ग पलेरी टेकमगढ़ एमपी से बिजेंद्र विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा प्रशांत शिंदे साथ में ऋषि शिंदे कृष्णा घोटके पंडारपुर सिटी रविदास चौक से और ये फरमाइश मौसूल हुई है। नई बस्तीगंज डंडा से मोहम्मद यासीन हाशमी नजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ हाशमी की सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक जायसवाल जामानिया गाजीपुर से सुरेश नारंग साथ में है उनके आशु और सोनाली सहारनपुर चंद्रनगर से आपकी फरमाइशों में मौसूल हुई। कोटवा नारायणपुर बाबट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा राय और अमित कुमार और आप सबकी फरमाइश पे आपको सुनवाते हैं अमर फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ शकील बदायूं जी का लिखा हुआ मोहसिन नौशाद साहब की है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से इस नगमे को पसंद किया महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीदेव गोस्वामी और मीनाक्षी ने और आप हैं सिद्धेश्वर नगर दरियापुर बाबली से सिद्धार्थ नगर गजन नीले नवदीप येले और अशोक येले चंपालाल दुबे अनंत और दशित की फरमाइश है भोपाल एमपी से अल्ताफ हुजे सैफुल्ला सबाह तुझे सांगली जत शहर से सुनने के मुंतजिर इसी नगमे को और ऊपर कोट माला चखुंडी बुलंदशहर से फरमाइश की है मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी

शाहनवाज सरफराज अब्बासी ने। अगला ईमेल रानीगंज बंगाल से है, रवि और इंदर का। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं शाहीन परवीन सोनम मारिया आय शेख मोहम्मद अली बांद्रा आर्मकोट मुंबई ईस्ट से, राधे कुमार विद्यार्थी सवित्रा दे विद्यार्थी बुल्केवाली फलनाजा गोकुल चौक गंगजला सहरसा से हैं। उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल साहिल हैं लगान पंडरिया से। अगले नगमे को आप भी सुनना चाहते हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से वो दोस्त, लेकिन इनके नाम हम शामिल कर चुके हैं तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं जनाब। सुरेश मालोडे, वर्षा मालोडे, श्रद्धा मालोडे कोजागिरी कॉलोनी कोपर गांव से हैं। अगला ईमेल मिला है बिट्टू भाटिया ने, ये भी ईमेल पहले शामिल हो चुका है। मोहल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, शेख मुजाहिद, मोहम्मद अजीम और कामरान खान हैं। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है, ये भी ईमेल पहले शामिल हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोदा रामटेके, साथ में शव्या और विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू रामगंज खंडवा से शामिल हुए हैं। विठल यादव, अंशिया यादव, पवनराज यादव है नागपुर महाराष्ट्र से और शाहिद अली, इफ्फत फारूकी और हिफ्जा अली तिम्बरम चेन्नई से, तम्बराम चेन्नई से हैं। और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, रियाज और मोहम्मद रिहान और उनके अहले खाना फ्रेंड्स। अच्छा रेडियो ग्रुप है छोटी बलिया कजत मुंबई से अहमद भाई, जूही इकबाल और इमरान अहमद और अहले खाना, दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार साथ में है, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से और ये फरमाइशी ईमेल हो गया है रिपीट, इसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। जफर मौजम शेख, फलक तबस्सुम, बेबी अलिस्बा है रघुवीर नगर दिल्ली से और ये फरमाइश आई है संतोष भागे सुनैना सुकन्या की, शाहजी नगर दिगलोर नांदेड़ महाराष्ट्र से और आप हैं सुभाष योगी, राजू गिलानी बब्बू डब्बू, कृष्णा कॉलोनी हासी से, हरजिंदर चिंदा जस्सी जसवी जस्सी और गीता हैं नथाना पंजाब से, सुरेश ककनीजा, पूनम ककनीजा, निमित की फरमाइश है जलालाबाद वेस्ट से और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है, बदलापुर मुंबई से परिणीता सिद्धांत गोहानकर और टुकटुक गोहानकर का और आप हैं गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और इनके साथ में अलका मिठा, विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम की फरमाइश है आकोट से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं गगनदीप थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका नवाशहर टोरोवाल से और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा पदमपुर श्रीगंगानगर से हैं। गोविंद सिंह पाना है करनाल से, साथ में बलविंदर सोडी, यश कुमार वर्मा, अमोल मानकर, शुभा तय मानकर श्लोक है बुल्डाना वर्डिशिंगी से, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तृप्ति साहू लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं, गंगाधर सावनकर विजयलक्ष्मी सावनकर रामरतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से और शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबे शेख, शेख रहीमुन्ना तेलंगाना के निजामाबाद से फरमाइश की आपने, मेहनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र में विजीत गोहनकर आई, सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर और ये फरमाइश चमनपुर उदयपुर से मिली है सबिया खानम, फरीदा बानो और रईसा खातून की और आप हैं बनी पट्टी मधुबन बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और नियति कुमारी। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

यू फतेह छिपा कॉलोनी खंडवा से, और कहते हैं कि आज सुबह 11:30 इनका जो खसूसी प्रोग्राम पेश किया था वो हमें बहुत पसंद आया, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और अगला ईमेल है डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, साथ में हैं उनके बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, 3/14 छत्तीसगढ़ भिलाई से, और संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक की फरमाइश पोटिया कला दुर्ग से मौसूल हुई है। इम्तियाज इमाम, आतिश ताहिरा परवीन, आतिश डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजाएं, बिशनपुर गेडी झारखंड से, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ है रफी रहमान बेगम शमा रफी का, मंगल बाजार कटिहार से आपने फरमाइश हमें इस्तेमाल की। और अगला ईमेल हो गया रिपीट, इसको भी करते हैं साइड लाइन जनाब। और आप हैं वो दोस्त बंडल लोहार पोपलगढ़ चंद्रकला, साथ में देवीदास तालुका निवासक हुक्की से। अगला ईमेल मौसूल हुआ है वैशाली शरीश गोहानकर, सुमित गोहानकर, ध्वनि गोहानकर, परिका, आकार हरीश बहादुर से, लक्ष्मण लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश है गाडगे नगर यवतमाल से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लो नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। और अगला ईमेल भी रिपीट है, स्टेट बैंक नगर पश्चिम दिल्ली से फरमाइश की लव शर्मा और रोशनी शर्मा ने, अनिल उषा बुरांडे और अनुश्री धनश्री बुरांडे यवतमाल से, जो सुन रहे इस वक्त अमर फिल्म का ये नगमा, रेखा कामले, राखी कामले, आनंद कुमार कामले गौरीनगर इंदौर से, ये फरमाइश मौसूल हुई है राहुल मनवर, सरला मनवर, बी प्रियांशी की, शाहनगर यवतमाल से। और स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, गुरलाल सिंह है गांव लोगर ठाकुरावाला से। अगला ईमेल मेरा मौसूल हुआ है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का। और आप हैं बड़े रैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द और अहले खाना, मास्टर विठल सरोशी, मायरा सरोशी, और साथ में है सुषमा काटा रोड वाशिम से। अगला ईमेल रिपीट है, उसके बाद वाला भी ईमेल रिपीट है जनाब, तो इनको करते हैं गंज डुंडवा से शमशुर कमर रही, शाहीन फातिमा, अदनान खान की फरमाइश भी हो गई है शामिल, रमेश कुमार यादव, माया यादव, कोमल हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से, और ये फरमाइश मिली है पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग और गोविंद चुग की। और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हरविंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, और वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और अरोड़ा, पिंकी अरोड़ा और अहले खाना। और अब यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सन ऑफ इंडिया फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, शकील बदायूनी का लिखा नगमा है, नौशाद साहब की है मौसीकी।

प्रसन्न के संदीप बुजुर्ग से संजय चौधरी मैत्री चौधरी गार्गी चौधरी ने बाबा साहेब अडोदे आदिचर पे चंद्र प्रभा अडोदे जरो वरुण से हैं। और अगला ईमेल रिपीट होगा, इसको भी साइडलाइन करना पड़ेगा। पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा और विशु खेड़ा और पंकज, ये हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, मीनाक्षी और अहलखाना। पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, साथ में आरजू जाजोरिया और विजय चौहान, इंदुका, तेजस्वी चौहान, अंकिता चौहान की फरमाइश मिली वर्णा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से और कासगंज यूपी से हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका अहलखाना। गांव हीरावाली फादर का पंजाब से फरमाइश की सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती ने। और अगले मेल रिपीट है, इनको करते हैं साइड लाइन। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से सुनना चाहते थे स्नेहा को, बसंत कुमार सिन्हा, अजय, तनुश्री गुप्ता और अंबिका बेबी।

0: जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती भट्ट और साथ में प्रयागराज भट्ट मोहम्मद बनौर से आदिल कमल तस्दीक अली और मुजफ्फर अली और ये फरमाइश मौसूल हुई है संजय ढींगिया नमन ढींगिया अबाढ़िया की बागपत यूपी से और दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका हैं चौटाला हरियाणा से और ये फरमाइश मिली है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहरुल अंसारी रजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी की जानिब से और धनौरी तेलवाड़ा से निसार सलमानी नौशा सलमानी बेबी आलिया की फरमाइश भी मुकम्मल हुई मुकेश कासलेकर हैं महाराष्ट्र के अमरावती से और रवि कुमार राहुल रंजीत कौर संजय जयप्रकाश राहुल कस्बा बराड़ा अम्बाला हरियाणा से और ये थी तामिली शाद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
3: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
3: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
4: बहुत ही महत्व रहता है क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे और घटेंगे क्यों, अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, इनका कोई महत्व नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो या जो चले गए हैं

0: उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के उन लोगों का नाम हो या जो लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए और जो लोगों का नाम इलेक्ट्रल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्ट्रल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिविजन उसमें क्या है उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्ट्रल रोल आपके सामने रखा गया है और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, मतलब वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो उससे लगता है कि अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकंड फेज में और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
0: देखिए जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के है। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, ये सब इलेक्शन कमीशन काम है, सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न हो सकते। इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है वो सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करेक्शन कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। 60 करोड़ लोगों का SIR हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है उसका मतलब ये है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगढ़ में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। अब देखिए एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है, मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज, एक है कि भाई जो डेड है, जो डुप्लीकेट है, जो माइग्रेटेड है, इनका नाम को जरूर निकलना है SD वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी उनके हिसाब से उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संवैधानिक बात होता है, राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी है इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा। तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर, अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को भी फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में खास करके अपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन

0: सुन के साथ बाकी SIR के जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी SIR होगा वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है, जो जो सवाल करें सुझाव दें सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें।
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो है क्या, आप आर्टिकल 3326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए। तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन, डालेगा। तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है, हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि SIR सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर, बाहर के नागरिक, ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। SIR सोल्यूशन नहीं है ना। नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है, और वो जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कैसे लोगों को बाहर, देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है। सिटीजनशिप एक्ट है इनका है, एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसी के तहत। लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलेमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन, ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था। ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स, कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशंस दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल। लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है। वो एक लिमिटेड पर्पस, अगर माने लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का वो डिसाइड करेगा, उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है, और ये भी सही है, पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूँ बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ये सब स्थिति ज्यादा था। एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में, या हिस्टोरिकल सेंस में, या सोशियोलॉजिकल सेंस में, वहां इस इशू का ज्यादा एक रिलेवेंस था, वैलिडिटी था, और पॉलिटिसाइज तो था ही। तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है, और अभी मैंने जैसे कहा ना 60% आबादी जो है, वोटर्स आबादी जो है 100 करोड़ मान लो रफली थे 2024 में, शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया, 40 करोड़ का तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को, कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो, और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें। तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है, और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छे नतीजा आया था। जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि इस SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो, लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने, इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए, कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए। फिर जोड़ने का एक मुहिम अच्छी तरह हो पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है, और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
1: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।
2: चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। बज़्मे मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी इस प्रोग्राम में रिजब सुनिए उस्ताद रहीमुद्दीन खान डागर का गाया राग बागेश्वरी में आलाप और धमाड़।

रोल की सताइश की। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधा कृष्णन कर्नाटक के देवन गेरे में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीब में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधा कृष्णन पनाजी में गोवा के योम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समुद्री उलूम के सीएसआईआर कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरतहाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान ये तबादले ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीकेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलात पर बातचीत की। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हरनाल जिले के शाहरंग इलाके में नामालूम मुसल्ला हमलावरों ने मकामी लोगों के ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग करके 5 अफराद को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया। मुसल्ला हमलावरों ने शेख मूसा बाबा चौक पर एक चौकी कायम कर ली थी और वो राहगीरों की कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड्स की चेकिंग करते थे। पुलिस ने बताया कि कुछ मकामी लोगों ने चेकिंग कराने से इनकार किया और मजाहमत की तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भीड़ पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 4 मकामी अफराद ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि एक बुरी तरह जख्मी शख्स जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, जिसे इलाज के लिए क्वेटा ले जाया जा रहा था। अमरीका और ईरान के दरमियान गैर मुस्तहकम जंग बंदी को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब दोनों मुल्कों ने आबनाए हुरमुस के नजदीक एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए, जो स्ट्रेटेजिक के तौर पर काफी अहमियत का हामिल है। कल सुबह सवेरे अमरीकी फौज ने ईरान के 4 ड्रोन्स को नाकारा बना दिया, जो उसके मुताबिक आबनाए हुरमुस के नजदीक अमरीकी फौज और उसके तिजारती जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे। ईरान 5वें ड्रोन दागने की भी तैयारी कर रहा था। अमरीकी सेंटर कमान ने अपनी कार्रवाई को कतई तौर पर दिफाई बताया और जंगबंदी बरकरार रखने का इरादा जाहिर किया। ईरान के पासदार इनकलाब ने बंदर अब्बास के नजदीक अमरीकी हमलों की तस्दीक की है और कहा है कि इसने अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का कल भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुंबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद कल दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में कल शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निस्यान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लबो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शुमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉ अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी। कौमी राजधानी खित्ते के कई इलाकों में कल शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान कल वियतनाम के शहर डानांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा शिरोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद
العبید کو 11-4 سے

0: शिकस्त दी, जबकि रुद्रा किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हराया। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पीवी सिंधु ने जापान की रिकू गुंजी को महज 37 मिनट के खेल में 21-9 और 21-12 से हरा दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला नंबर एक खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन जनूबी कोरिया की आन सी युंग से होगा। उधर मर्दों के जुमरे में लक्ष्य सेन अगले राउंड में पहुंच गए हैं, क्योंकि थाईलैंड के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कुनलावुत विदितसरन मैच के शुरू में कमर में तकलीफ की वजह से मैदान से हट गए थे। अब सेन का मुकाबला जापान के कोकी वाटानाबे से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरतहाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में नामालूम हमलावरों ने मकामी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके कई लोगों को हलाक कर दिया है। अमरीका और ईरान ने गैर मुस्तहकम जंगबंदी के दरमियान एक दूसरे पर बराह रास्त फौजी हमले किए। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। क्लासिकी मौसीकी में लीजिए, सुनिए पंडित रामजी लाल शर्मा का पखावज पर बजाया धमार ताल और सूल ताल।

क्लासिकी मौसीकी में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामजीलाल शर्मा का पखावज पर बजाया दुआर ताल और सूल ताल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आखिरी शब्द ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। इस प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। आगाज मयूर पंख फिल्म के नगमे से लता मंगेशकर की आवाज में।

मूल महल का ये नगमा आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में, और इसके साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 हो जाते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरतहाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो कल गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। दिल्ली तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहिया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुंभों के मेयारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया कि वह कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया इख्तियार करे जिसमें शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल सुबह गैंगटॉक में अलंकार परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलौर में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधा कृष्णन कर्नाटक के देवनगिरे में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम

0: جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: ویم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کا 1 بجا چاہتا ہے ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر آپ کی خدمات میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں ارون کمار۔ गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करे।
2: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1 सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
4: 2 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहाँ वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चा मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दौरान श्री डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की और रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा सहित व्यापार सहयोग पर चर्चा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली है। प्रिटोरिया हिंदू सेवा समाज के मंदिर और सामुदायिक भवन पर

0: at the working session of the informal meeting of EU ministers of foreign affairs, Dominic and Tsipras. External affairs ministry said the discussion focused on relevant policy issues of shared interest, in particular the geopolitical impact of developments in the West Asia and the wider region. Two Indian wrestlers advanced to the semi-finals of the Asian Under 17 Wrestling Championship in Da Nang, Vietnam yesterday. In the men's 45kg Greco-Roman category, Sachin Kalappa Shiroli defeated Sameed Ahmed Al Obeid of Jordan 11-4, while in the 110kg category, Rudra Kiran Nimhan beat Korea's Seok Myo Sim 8-0 in quarterfinal matches. Prime Minister Narendra Modi congratulated Indian wrestlers for their outstanding performance at the 2026 Under-23 Asian Championships held in Da Nang, Vietnam. In a social media post, Mr. Modi said that the men's freestyle and women's wrestling teams won the team titles at the championship. He said that the men's freestyle wrestling team secured a record of 9 medals. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 1:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा के फिल्म संगीत सॉन्ग। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत, गीतों का वो समय, वो समा, वो समय, या फिर यूं कहें खूबसूरत समा, खूबसूरत समय। क्योंकि गीत जब बनने शुरू हुए तो उसी एरा के गीत को आज भी तो हम याद कर रहे हैं, और आज भी तो हमारे जुबान पर यूं सजा है मानो आज ही जन्म लिया हो। गीतों का वो समय, वो दौर जब संगीत से ज्यादा बोल पर ध्यान दिया जाता था और संगीत एक हल्के छुवन के साथ गीत को खूबसूरत बना देता था, उन्हीं एरा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उन्हीं गीतों में से एक गीत ये है।

जी हाँ, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, मुझे भी तो एक मौका मिल गया आपसे बात करने का। गीतों का वो दौर जब गीत के बोल आपके आम जिंदगी को भी छू जाते थे, और यही कारण है कि उस वक्त के गीत आज भी तो हमें याद है। और गीतों का वो सफर जब शुरू होता है तो कहाँ ही रुकता है, क्योंकि उस जमाने में एक एक फिल्म में तकरीबन 6-6, 7-7 गीत होते थे, वो भी सारे के सारे हिट, यानी बहुत ही खूबसूरत।

और जब गोल्डन एरा की बात हो रही है तो वो गाना कैसे हम भूल सकते हैं जब आवाज देकर कह रहा है कोई कि हमें तो बुला लो। जी हाँ, वो गीत, उसमें ऐसा कशिश, ऐसी मोहब्बत, गीत के हर एक बोल ने अपने हर एक शब्द से आवाज लगाई है।

जी हाँ, आवाज देकर जहां पर बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है हमें बुला लो, वहीं पर कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चलो मैं हार गई हूं, अब मान जाओ। जी हाँ, दोनों में मोहब्बत को रोका ही तो जा रहा है। मोहब्बत भरे नगमे आप सुन रहे हैं, गीत सुनहरे फिल्म संगीत गोल्डन एरा के पूजा भारती के साथ।

गीतों का वो समय भी रहा जब हार मान गए, लेकिन कहीं कहीं ये भी रहा कि जब दूरी हो जाती है तब वो याद, वो प्यार, वो मोहब्बत, सब कुछ इस तरह लगता है जैसे सब झूठ तो नहीं। और ये लगने लग जाता है कि मुझे शायद भुला दिया गया है, लेकिन मोहब्बत कभी भी किसी के दिल से जुदा नहीं हो सकता।

यूं ही तो जीवन ना जिया, यूं ही तो जीवन ना जिया, जिया तो बस तुम्हारे प्यार में पिया। प्यार यूं ही जीवन में बना रहे, मेरे जीवन में पिया तेरा प्यार रहे।

ठीक उसी तरीके से ऐसा लगने लग जाता है कि मोहब्बत जिससे कर रहे हैं उसके जैसा तो कोई भी नहीं। जी हाँ, मोहब्बत तो उसी से हो जाती है जो बिल्कुल अलग लगता हो, और हर एक नजर में वो मोहब्बत, वो प्यार, वो इंसान वाकई में सबसे अलग है।

और फिर कहा जाता है कि जहां मोहब्बत है वही टकरार है, और वहीं पर ऐसी उलझन भी है जहां पूरी दुनिया शामिल हो जाती है। तब तो मोहब्बत का कह लीजिए एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में बहुत कम लोग ही पास हो पाते हैं। लेकिन जो पास हुए, मान लीजिए सच्ची मोहब्बत है ये। मोहब्बत की दुनिया कुछ अलग ही होती है। उन्हीं दुनिया में जब गीत के झनकार गूंजते हैं तो मोहब्बत और खूबसूरत नजर आने लगते हैं।

0: यूं ही तुम्हें देखते रहे और मोहब्बत बढ़ती जाए। मोहब्बत का एक समय ऐसा भी होता है जब आंखों में, सपनों में, ख्यालों में, दुनिया में हर एक जगह वो ही नजर आता है। मोहब्बत में डूबे हुए लोग किसी को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, सिर्फ एक ही भाषा उन्हें पता होती है, मोहब्बत। और वो उन सारे मोहब्बत करने वालों के साथ होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ये प्यार, ये मोहब्बत दिल से किस कदर जुड़ा है और दिल के कितने करीब है। इन्हीं मोहब्बत में डूबे हुए कई गीतों में एक गीत ये भी है।
1: न झटके ज़ुल्फ़ से

यूं ही कहते सुनते मोहब्बत में दिन गुजरते रहते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत में लड़ाइयां भी बहुत होती हैं, टकराव होता है, और फिर देखा गया है मोहब्बत और प्रगाढ़ हो जाता है। कहते हैं कि मोहब्बत पर मौसम का अलग ही असर होता है। हर एक समय, हर एक जन्म, हर एक पल, हर एक दिन मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, मोहब्बत के यही अफसाने, यही गाने जिन्हें हम गुनगुनाते हैं, और मोहब्बत में पड़े हुए दीवाने इन्हीं गीतों को अपना जीवन मानते हैं। मोहब्बत के ऐसे ही कई गाने, कई अफसाने हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कि मोहब्बत के इन समा को यहीं पर रोक दिया जाए। जी हाँ, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम का अब समय संपन्न होता है। एक आखिरी गीत है आपके लिए, लेकिन मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: 2 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। यह कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमरीका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। इससे पहले अमरीका ने हॉर्मुज जल डरमुर मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमरीकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम उल्लंघन करार दिया।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत कार्यक्रम, खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: आप सब, आपके मशीने यहाँ धरती में इतने नीचे थी, मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कान में बस बूंदे ही बची है। अपनी फोटो भेज रहा हूँ और ये देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हम अपना ख्याल रखिएगा।
1: इसी के साथ गीत बहार फिल्म म्यूजिक नॉन स्टॉप का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: Aaron Kumar. गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमान के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमान के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधीन्द्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनका पहला लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर समेत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमरीकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। यह कार्रवाई दक्षिण ईरान पर अमरीका के ताजा हमलों के बाद की गई। कुवैत ने कहा कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया है। इससे पहले अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। वहीं ईरान ने भी अमरीकी हमलों की निंदा की और इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया। हांगकांग में शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. cooperation, Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in the Gandhinagar Lok Sabha constituency yesterday. Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country. During his address, the Home Minister also congratulated the West Bengal government for swiftly providing 600 hectares of land to the Border Security Force within a week. Union Home Minister Amit Shah yesterday held a meeting to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Shah said that Narendra Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sports facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad will be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala from today till 31st of this month. The Vice President will attend a global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Devanagari, Karnataka. On 30th, Mr. Radhakrishnan will participate in the Statehood Day celebrations of Goa at Panji and will also visit CSIR National Institute of Oceanography, Goa. The Vice President is also scheduled to inaugurate the Suri Industrial Park at Belthandi and visit the Sri Kshetra Dhamsthalam Manjutha Swami Temple in Karnataka on 31st of this month. Later on the same day, he'll visit Kerala to inaugurate the 140th Foundation Anniversary celebrations of Deepika Malayalam Daily at Kottayam. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level review meeting at the CBSE headquarters in New Delhi to review issues related to the evaluation and post-result process of the CBSE Class 12 examinations. During the meeting, the minister directed officials to take all necessary measures to ensure that issues faced by students are resolved in a timely, transparent and student-friendly manner. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate COET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examination will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, covet.nta.nic.in. American and Iranian negotiators have agreed on the framework of a memorandum of understanding for a 60-day ceasefire extension, but the deal still requires final approval from President Donald Trump, U.S. officials have confirmed. The agreement, first reported by U.S. media outlet Axios, would bring the escalation to a conflict that has rattled global energy markets and disrupted shipping lanes since Iran closed the Strait of Hormuz earlier this year. Under the draft MOU, the strait would reopen to unrestricted commercial traffic, meaning no tolls and no interference, and Iran would be required to clear all mines it deployed in the waterway within 30 days. In turn, the U.S. would proportionally lift its naval blockade on Iranian ports and issue sanction waivers allowing Tehran to sell oil freely. The MOU also includes a formal Iranian commitment not to pursue a nuclear weapon. The CBI has arrested Guribala Singh in the Trisha Sharma death case. Guribala is Trisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made yesterday in Bhopal, the capital of MP. A CBI team reached Guribala's home at around 10:30 last morning. They questioned and searched the premises for nearly 7 hours. She was finally arrested. She has been taken to a hospital for medical checkup. After that, she will be produced before a CBI court. India Meteorological Department has forecast that heatwave conditions are expected to abate over many parts of northwest India. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 12 सेकंड। अब श्रोताओं समय है कार्यक्रम गजल गीत का। कार्यक्रम गजल गीत लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। आइए सबसे पहले सुनते हैं एक गजल जो कि कलाकार हैं, गायक कलाकार मिताली और भूपेंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

जी हाँ, पूरा दुख और आधा चांद, बहुत ही खूबसूरत गजल ये अभी आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज में। गुरुकार यानी कि जो गजल की रचना थी वो थी परवीन शाकिर की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और गजल जगजीत सिंह के स्वर में।

जी दोस्तों, कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं एक और गजल। कलाकार हैं शोमोना रॉय विश्वास।

0: आप सब। आपके उशीने यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची है। अपनी फोटो भेज रहा हूं, उन्हें देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: इसी के साथ गजल गीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
2: प्रस्तुत है अर्चना।

के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सेलगान रूप में।

श्री स्वाति देवनाल की एक भक्ति रचना सुना रहे हैं जिसे स्वर दिया है महाराजा परम संतानम में।

ami, dishi dishi gopi ami, jami, venu nambaji.

0: समाज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: जी आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। नाद ब्रह्म के कार्यक्रम कर्नाटक संगीत में आइए अब सुनते हैं उषा विजय कुमार का गोटू वाद्यम, राग है चारू केसी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उषा विजय कुमार का गोट्टू वादम, राग था चारू केसी। वंदे मातरम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम यानी कार्यक्रम विवरण के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा योगबद्ध पद्मासन। 5:30 पर स्वर रंजनी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे प्रसेनजीत रॉय का सितार पर बजाया गया राग ललित। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं।

7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक के भजन। 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे कृष्ण शर्मा का गिटार पर बजाया गया राग चारुकेशी। गांधी चर्चा का समय रहेगा 9:15 जिसमें एक वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका विषय होगा स्वरोजगार और खेती के महत्व पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे गौरव कांत शर्मा। 9:30 पर कार्यक्रम होगा मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम और दिन में 10:10 पर सुबह आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

0: सरस कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11:10 और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे प्रसन्नजीत राय का सितार वादन। दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम घर आंगन एक कदम बुजुर्गों की ओर। दिन में दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, फिल्म होगी गाइड। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह को के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवे आवन का सदका सर्व सुख होवा, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचे आ रे आए तो देख तेग फतेह। दर्द की पैज पंत की जीता श्री साहेब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोला जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान, बबेक दान वसाह दान पड़ोसा दान, दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: तगना तू सपूत महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी पलके तुक पवे दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना की।

पौड़ी चिट्टे अंदर साहब को वेख नदरी हेठ चलाए दा आपे देवड़िया आपे कर्म कराए दा बड़ हो बड़ा बड़ मेद नहीं सिरे सिर धंधे लाए दा नदरो पट्टी जे करे सुल्ताना कहो कराए दा दर मंगण पिख ना पाए दा दर मंगण पिख ना पाए।

पौड़ी आप ही करना की गल आप ही तय धारी है देखे किता अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो ऐसो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है कि साहब मनम सारी है अपन हथी अपना।